सुप्रभात एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की तिथि 26, तदनुसार 16 जून ईस्वी सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और कुछ ही पलों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए लिए चलेंगे आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme, Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with the Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of United Kingdom Keir Starmer and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. Prime Minister Narendra Modi is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron in what is expected to be a highly productive and wide-ranging visit. Notably, this marks India's 13th participation at the G7 summit and the Prime Minister's 7th consecutive participation. India's regular participation at the G7 summit reflects the increasing recognition of New Delhi's role and contributions in addressing global challenges related to peace, security, development and environmental sustainability. A report.
3: India's strategic importance for the G7 is increasingly being reflected in concrete economic and technology partnerships. This is evident from the recently concluded India-EU trade agreement, as well as initiatives such as Bharat Innovates in Nice and India's role as the official AI partner country at upcoming VivaTech in Paris. These developments underline how G7 countries are looking at India not only as a major market, but also as a trusted partner in technology, innovation, manufacturing, and resilient supply chains. Significantly, many of the priorities identified by the French G7 presidency, including reducing imbalance, international partnerships, and artificial intelligence, closely align with India's strengths and interests. Ankit Kumar, Akashvani News, Evian, France.
2: Earlier yesterday, India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also linked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है यह हमारे साझा विश्वास साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की ऑटोमोबाइल रेलवे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government, and the people of Slovakia for the distinguished honor. Accepting the award, he noted that the honor was a tribute to the 1.4 billion people of India and to the enduring bonds of friendship between India and Slovakia. The Ministry of Youth Affairs and Sports is hosting the Viksit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi. Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the Viksit Bharat Youth Parliament at the national level today. The ministry said that the initiative reimagines youth engagement with democratic processes, offering young citizens a hands-on understanding of governance, policy deliberation and parliamentary functioning. Tiny Cape Verde pulled off a stunning result in its World Cup debut, shutting out heavily favoured Spain. An impressive performance by a 40-year-old goalkeeper, Virginia, helped Cape Verde play one of the favourites to in the tournament to a 0-0 draw. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। कलाकार हैं सुरेश वाडेकर।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। कलाकार थे सुरेश वाडेकर। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। तो आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति गीत।

आकाशवाणी का ये चाय बसा केंद्र है और अब श्रोताओं आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगे सतीश कुमार शर्मा और कार्यक्रम जोहार चाय बसा का समय होगा 7:00। समाचार प्रभात प्रातः 8:00 और मॉर्निंग न्यूज़ का प्रसारण 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र 8:30 पर। 8:40 पर लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक का प्रसारण होगा, जिसमें आप सुनेंगे कुरमाले लोकगीत कैलाश चंद्र महतो और उनके साथियों से। 9:00 प्रसारित की जाएगी कार्यक्रम विविधा, जिसमें हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और सुनवाएंगे आपको गीत। 9:30 पर समय होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम का रसरंजन का, जिसमें आप कुछ फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे। 10:00 प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित की जाएगी, इसके प्रायोजक होंगे NCERT। 10:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। हमारे सायंकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:02 पर। तो श्रोताओं अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम और कलाकार हैं सतीश के शर्मा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सतीश कुमार शर्मा के स्वर में ये गीत। इसी के साथ हमारा सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये चाय बासा केंद्र है और अब श्रोताओं हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम जोहार चाय बासा। जोहार चाय बासा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का जोहार। श्रोताओं, सूर्योदय हमें यह संदेश देता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, नई शुरुआत की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो सभी श्रोताओं को सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय, ऊर्जावान और सफल हो, इसी सुविचार के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का जोहार चायबासा का ये कार्यक्रम। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात सुबह की सुनहरी किरणों की है। उगते सूर्य के साथ प्रकृति का हर कोना जैसे प्रकाश से भर उठता है, इसी सुंदर भावना को व्यक्त करता है हमारा यह गीत। सुनवा रहे हैं आपको लता मंगेशकर का गाया, फिल्म भाभी की चूड़ियों से।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया फिल्म भाभी की चूड़ियां का ये गीत। सुबह का समय, वातावरण श्रोताओं सुहावना रहता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। यदि आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी अवश्य रखें और धूप से बचाव के उपाय अवश्य करें। और कार्यालय जाने वाले चालकों से अनुरोध है कि अपने गति को, गाड़ी की गति को नियंत्रित रखें। स्कूल बसों और पैदल यात्रियों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सुरक्षित यात्रा ही सुखद यात्रा है। और अब श्रोताओं, हम सुनवा रहे हैं हमारे कार्यक्रम जोहा चैबसा का अगला ये प्यारा सा गीत, लता मंगेशकर का गाया, हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन के धुन पर, फिल्म शतरंज से।

संगीत के इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। और हाँ, यदि आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा अतिरिक्त समय योजना बनाकर अवश्य निकलें, क्योंकि सुबह के समय भीड़ भाड़ अधिक रह सकती है और वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग बिल्कुल भी न करें। आसमान में हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिन में गर्मी और उमस का प्रभाव बढ़ सकता है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। और श्रोताओं, अब बारी है उस गीत की जो हमारे कार्यक्रम का फिल्म का नाम है ताजमहल, जो प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन चुका है। तो सुनते हैं यह कालजयी गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम जोहार चाईबासा आप सुन रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं हम ये प्यारे गीत। श्रोताओं, अगर दो पहिया वाहन चालक अपने हेलमेट अवश्य पहने, चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, सड़क पर आपका एक छोटा सा सावधानी भरा कदम किसी बड़े हादसे को टाल सकता है। और अब सुनवा रहे हैं आपको फिल्म नसीब का ये जोश और उत्साह से भरा गीत, मोहम्मद रफ़ी का गाया।

श्रोताओं, मौसम और जीवन दोनों ही समय समय पर रंग बदलते रहते हैं, और इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करता हुआ सुनवा रहे हैं हम आपको हमारे कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है खयाम ने, और फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं। कलाकार हैं सुमन कल्याणपुर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
4: ही नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरण बेटा क्रांति बेसरा

दोस्तों, सुबह की ताजगी धीरे धीरे दिन की गर्माहट में बदल रही है। मौसम चाहे जैसा भी हो, सकारात्मक सोच और मुस्कान हमारे दिन को बेहतर बना देती है। और अब सुनवा रहे हैं आपको फिल्म लिबास का ये मधुर गीत। तो सुनते हैं गुलजार के बोल और आर डी बर्मन के धुन पर आशा भोसले और किशोर कुमार को

मैं करता हूँ तुम्हारा इंतजार। तब से मेरी बाहें सोनी, जीवन की ये राहें सोनी, तुम बिन कैसे पूरे होंगे।

कार्यक्रम के अंतिम चरण में श्रोताओं आपने सुना शैलेंद्र का लिखा ये गीत शंकर जयकिशन के धुन पर, मोहम्मद रफ़ी का गाया, फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। तो श्रोताओं आज आपने अभी जानकारी ली मौसम की, ट्रैफिक अपडेट की और मधुर गीतों से सजे इस प्रातःकालीन कार्यक्रम जोहार चायबासा में। बस इतना ही श्रोताओं, याद रखिए सुरक्षित यात्रा, स्वस्थ जीवन और मधुर संगीत दिन की हमारे दिन को सफल बनाते हैं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं।

आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है और इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए लिए चलते हैं आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: घर वाले कुड़कुड़ दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज़।

0: और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जल मार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये होर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
5: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का

0: सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government, and the people of Slovakia for the distinguished honor.
3: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
2: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense, following talks between Prime Minister Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future."
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: The Prime Minister said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
2: Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Slovakia has filed this report.
5: Several historic decisions with the potential to significantly strengthen India-Slovakia relations were taken during the Prime Minister's visit to Bratislava. 11 MOUs were signed yesterday during Prime Minister Narendra Modi's visit. These agreements are expected to enhance cooperation in areas such as defense, civil nuclear energy, tourism, advanced technologies including quantum communication and artificial intelligence and higher education. During talks between Prime Minister Narendra Modi and Slovak Prime Minister Robert Fico, both sides also decided to establish a joint working group to strengthen cooperation in combating terrorism. Prime Minister Modi will depart from Bratislava today and travel to France to participate in the G7 summit. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava in Slovak Republic.
2: Prime Minister Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय ने झारखंड के लिए अलग एनसीसी निदेशालय स्थापित करने की दी मंजूरी। राज्य में एनसीसी की प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशिक्षण गतिविधियां होंगी सुदृढ़। राज्य सरकार ने वन्य जीवों के हमले में मौत पर आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने और राज्य कर्मियों के लिए अग्रिम वेतन योजना शुरू करने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का करेंगे शुभारंभ। किसानों को कृषि की नई तकनीक अब जानने का मिलेगा अवसर। झारखंड के 8 जिलों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की हुई एंट्री। अगले 4-5 दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी मॉनसून मजबूती के साथ देगा दस्तक। और जेएससी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे झारखंड टी20 टूर्नामेंट में रांची टाइटंस ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्रालय ने झारखंड के लिए अलग एनसीसी निदेशालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में एनसीसी की प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशिक्षण गतिविधियां अधिक सुदृढ़ होंगी। नए निदेशालय के गठन से थल सैनिक कैंप, नौसैनिक कैंप, वायु सैनिक कैंप और विभिन्न साहसिक गतिविधियों में झारखंड के अधिक से अधिक कैडेटों को भाग लेने और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को नशा मुक्त राज्य बनाने के संकल्प के साथ कल रांची से राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशीले और मादक पदार्थ सेवन से स्वास्थ्य खराब होता है और यह व्यक्ति के साथ परिवार, समाज और राज्य की प्रगति के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने सही गलत की पहचान के लिए जन जागरूकता पर जोर दिया। श्री सोरेन ने कहा कि युवाओं को नशा से बचाना उनकी प्राथमिकता है।
1: हर चीज का दो पहलू, अच्छा खराब, इसी बाबत ये हम लोगों ने एक मुहिम के रूप में लिया है कि लोग सही और गलत चीजों को पहचाने। मुझे जो लगता है

0: के लिए कानून बनता है, आम नागरिकों के लिए, उनको उस कानून के बारे में पता ही नहीं रहता है, जाने अनजाने में घटनाएं हो जाती हैं।
1: राज्य सरकार ने कल जनहित, कर्मचारियों की सुविधाओं, सड़क निर्माण, सिंचाई और खनन से जुड़े 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि अब वन्य जीवों के हमले में मौत होने पर सरकार आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा देगी। सरकार ने कर्मचारियों के लिए अग्रिम वेतन योजना शुरू करने का भी फैसला किया है।
2: सरकार के कर्मचारियों को क्रेडिट सुविधाएं, बीमा उत्पाद और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एजेंसी से एम्पैनलमेंट किया जाएगा। जंगली जानवरों द्वारा मनुष्य की मृत्यु होने पर जो वर्तमान दर 4 लाख है, उसे बढ़ा करके 10 लाख किया गया है।
1: इसके साथ ही नई नियुक्तियां पे लेवल 2 के तहत करने के साथ साथ सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 162 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पलामू की अमानत बराज योजना के लिए 947 करोड़ रुपए से अधिक की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को होने वाले चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव में जीत के लिए महागठबंधन और एनडीए बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। महागठबंधन के पास चुनावी जीत का आंकड़ा है तो एनडीए भी जीत का दावा कर रहा है। इधर आज शाम मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक होगी। इससे पूर्व कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, सांसद डॉ सैयद नसीर हुसैन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक प्रदीप यादव और अजय शर्मा ने मुलाकात की। वहीं कल भाजपा कार्यालय में एनडीए विधायक दल की बैठक में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी शामिल हुए। झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में एसीबी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कल हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी को अन्य अभियुक्तों के संबंध में पारित न्यायिक आदेशों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अब तक एकत्र साक्ष्यों को सील बंद लिफाफे में अदालत को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि ये मामला हजारीबाग जिले में 28 डिसमिल गैर मजरुआ खास जंगल झाड़ श्रेणी की सरकारी भूमि की कथित अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का शुभारंभ करेंगे। इससे पूर्व कल कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि यह मेला किसानों के लिए नई तकनीकों और बाजार की संभावनाओं को जानने का अवसर साबित होगा। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रयासरत है। इधर किसान मेला सह प्रदर्शनी में साहिबगंज जिले के भी प्रगतिशील किसान भाग ले रहे हैं। कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का ने कहा कि मेले में आधुनिक तकनीक और कृषि वानिकी से जुड़े नए विकल्पों को देखेंगे।
5: समेकित कृषि प्रणाली पर आधारित कृषि एवं संबंध विभाग के सभी प्रकार के जो भी योजनाएं हैं या उससे संबंधित जो भी मशीनीकरण चीजें हैं वो सारे चीज वहां उनको दिखाया जाएगा, ताकि किसान वहां देख के अपने खेतों में उसको अप्लाई कर सके। साथ ही साथ वहां कृषि के उपज भी प्रदर्शित किए जाएंगे और जितने तरह के उपज हैं उन पर कुछ प्रोत्साहन राशि भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस मेला में हम लोग साहिबगंज जिला से कुल 75 किसानों को भेज रहे हैं।
1: झारखंड के 8 जिलों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4-5 दिनों में राज्य के अन्य जिलों में भी मॉनसून प्रवेश कर जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आज और कल मॉनसून की स्थिति कमजोर रह सकती है, इसके बाद राज्य में मॉनसून की स्थिति मजबूत होगी। झारखंड T20 क्रिकेट लीग 2026 में कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में रांची टाइटंस ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए संथाल स्ट्राइकर्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 210 रन बनाए। रांची टाइटंस ने 19 ओवर और 3 गेंदों में 211 रन बनाकर जीत हासिल की। रांची के खेलगांव स्थित रोलर स्केटिंग स्टेडियम में 17 से 21 जून तक 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे, जबकि झारखंड के 13 जिलों के 127 खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। झारखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के सचिव सुमित शर्मा ने कहा कि यह आयोजन राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करेगा।
6: रोड और ट्रैक दोनों इवेंट हमारे हैं और इसमें 1000 से अबव बच्चे पार्ट करेंगे। झारखंड के इसमें 127 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। अंडर 8 से लेके अंडर 19 तक के बच्चे इसमें खेल रहे हैं। अनीश राज और क्रिश शर्मा दोनों झारखंड के खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए और इस इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए हमारे गेस्ट बन के यहाँ पे आ रहे हैं।
1: अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्ति के समझौते की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ईरान को 28 लाख करोड़ देकर जंग से छूटेंगे ट्रंप। दैनिक जागरण ने लिखा है, जंगली जानवरों के हमले में मौत पर अब 10 लाख मुआवजा। हिंदुस्तान ने झारखंड की 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर लिखा है, सियासी घेराबंदी तेज, दोनों पक्षों ने झोंकी ताकत। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योग दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता में आयोजित होने की खबर को अपने पहले पेज पर जगह दी है। और अंत में मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय ने झारखंड के लिए अलग एनसीसी निदेशालय स्थापित करने की दी मंजूरी। राज्य में एनसीसी के प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशिक्षण गतिविधियां होंगी सुदृढ़। राज्य सरकार ने वन्य जीवों के हमले में मौत पर आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने और राज्य कर्मियों के लिए अग्रिम वेतन योजना शुरू करने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का करेंगे शुभारंभ। किसानों को कृषि की नई तकनीक जानने का मिलेगा अवसर। झारखंड के 8 जिलों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की हुई एंट्री। अगले 4-5 दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी मॉनसून मजबूती के साथ देगा दस्तक। और जेएससी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे झारखंड T20 टूर्नामेंट में रांची टाइटंस ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से किया पराजित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। कार्यक्रम माटी की महक में श्रोताओं आज आपको सुनवा रहे हैं कैलाश चंद्र महतो और साथियों का गाया ये कुरमाली लोकगीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे थे लोकगीत के कार्यक्रम माटी की महक में कुरमाली लोकगीत कैलाश चंद्र महतो और साथियों से। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस और विश्व समुद्री कछुआ दिवस पर। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस पर। प्रत्येक वर्ष 16 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक

प्रेषण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन करोड़ों प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है जो अपने परिवारों से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं और अपनी कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने घर भेजते हैं। इस धनराशि को ही रेमिटेंस या प्रेषण कहा जाता है। दोस्तों, आज के वैश्विक युग में लाखों लोग बेहतर रोजगार और जीवन की तलाश में अपने देश या क्षेत्र से दूर जाकर काम कर रहे हैं। उनके द्वारा भेजी गई धनराशि केवल परिवार की आर्थिक सहायता नहीं करती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस दिवस के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पारिवारिक प्रेषण क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार से दूर किसी अन्य राज्य या देश में काम करता है और अपनी आय का एक भाग अपने परिवार को भेजता है तो उसे पारिवारिक प्रेषण कहा जाता है। जैसे कि यदि कोई भारतीय नागरिक खाड़ी देशों, यूरोप, अमेरिका या अन्य देशों में नौकरी करता है तो हर महीने अपने परिवार के खर्च के लिए पैसा भेजता है तो यह धनराशि रेमिटेंस कहलाती है। यह धन सीधे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के उपयोग होता है, जैसे बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, भोजन और पोषण के लिए, आवास निर्माण के लिए, कृषि और छोटे व्यवसाय के लिए, सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस को आधिकारिक रूप से 2015 में मान्यता मिली। इसका उद्देश्य था दुनिया भर के प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना और यह बताना था कि उनके द्वारा भेजी गई धनराशि लाखों परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह दिवस मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के प्रयासों से प्रारंभ हुआ। बाद में संयुक्त राष्ट्र और अनेक देशों ने भी इसे समर्थन प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे प्रवासी श्रमिकों का सम्मान करना। यह दिवस उन लोगों को सम्मान देने का एक अवसर है जो अपने परिवारों से दूर रहकर कड़ी मेहनत करते हैं और अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था में रेमिटेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिवस लोगों के इसके महत्व के प्रति जागरूक करना है। प्रेषण से प्राप्त धन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है और उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए मदद करता है। इस दिवस के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल भुगतान और सुरक्षित धन हस्तांतरण प्रणालियों को बढ़ावा दिया गया। रेमिटेंस संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आज विश्व में करोड़ों लोग रोजगार के लिए अपने देश से बाहर रह रहे हैं। वे विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जैसे निर्माण कार्य में, स्वास्थ्य सेवाओं में, परिवहन में, कृषि, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और घरेलू सेवाओं में। इन श्रमिकों का योगदान केवल उनके कार्यस्थल तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके परिवार और समाज तक भी पहुंचता है। अक्सर ये श्रमिक कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं और अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। इसके बावजूद वे अपने परिवारों की खुशहाली के लिए निरंतर धन भेजते हैं। इनके धन भेजने का प्रभाव उनके परिवारों पर श्रोताओं बहुत ही व्यापक रूप से पड़ता है। जैसे इस रेमिटेंस से परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर पाते हैं, इससे बच्चों के भविष्य की संभावनाएं बढ़ती है। धन की उपलब्धता से परिवार बेहतर चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा पाते हैं। भोजन, वस्त्र, आवास और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति इनके परिवारों में आसान से हो जाती है।
अनेक परिवारों में महिलाएं आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम होती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। आर्थिक संकट या आपातकालीन परिस्थितियों में रेमिटेंस परिवारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। रेमिटेंस का सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। श्रोताओं, ग्रामीण परिवार इस धन का उपयोग अपने खेतों में निवेश करके करते हैं, पशुपालन में करते हैं, छोटे व्यवसाय अपनाकर करते हैं, घर निर्माण कराकर करते हैं और बच्चों को शिक्षा प्रदान करके। इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। रेमिटेंस केवल परिवारों की आय नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रोताओं, कई विकासशील देशों में रेमिटेंस विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत है। यह राष्ट्रीय आय बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी या आर्थिक संकट के समय भी रेमिटेंस परिवारों के लिए जीवन रेखा का कार्य करते हैं। भारत में लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में रहा है। विदेशों में कार्यरत भारतीय विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में काम करते हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में कार्यरत भारतीय हर वर्ष अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। यह धनराशि लाखों भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनीकी विकास ने धन हस्तांतरण को पहले की तुलना में और अधिक सरल, तेज और सुरक्षित बना दिया है। आज लोग अनेक माध्यमों से धन भेज सकते हैं, जैसे बैंक ट्रांसफ़र, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र सेवाओं और UPI आधारित भुगतान प्रणाली के द्वारा। डिजिटल तकनीक के कारण धन कम समय में और कम लागत पर भेजा जा सकता है। COVID-19 महामारी के दौरान लाखों प्रवासी श्रमिकों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी अनेक प्रवासी अपने परिवारों की सहायता के लिए धन भेजते रहे। इस दौरान यह स्पष्ट हुआ कि रेमिटेंस केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि संकट के समय सामाजिक सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। महामारी ने डिजिटल भुगतान प्रणालियों के उपयोग को और भी बढ़ावा दिया। आज रेमिटेंस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे धन हस्तांतरण की उच्च लागत का होना। कई देशों में धन भेजने की लागत अभी भी बहुत ही अधिक है। वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की कमी के कारण यह एक चुनौती है। कानूनी और प्रशासनिक बाधाएं भी हैं श्रोताओं, जिसमें धन हस्तांतरण के नियम जटिल हो जाते हैं। कम वेतन, असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ और सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसे प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं बनी हुई है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम होने आवश्यक है, जैसे धन हस्तांतरण के शुल्क को कम करना, डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो श्रोताओं, हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस हमें उन करोड़ों प्रवासी श्रमिकों को याद करने का एक अवसर है, जो अपने परिवारों के बेहतर भविष्य के लिए दूर देशों में कठिन परिश्रम करते हैं। उनके द्वारा भेजी गई धनराशि लाखों परिवारों के जीवन में आशा, सुरक्षा और समृद्धि लेकर आती है। यह दिवस हमें यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि रेमिटेंस केवल पैसा नहीं, बल्कि परिवारों के प्रति प्रेम, जिम्मेदारी और समर्पण का प्रतीक भी है। प्रवासी श्रमिकों के अथक परिश्रम और त्याग के कारण ही अनेक परिवार आज बेहतर जीवन पा रहे हैं। अनेक देशों की अर्थव्यवस्था
मजबूत हो रही है। इसलिए 16 जून यानी आज के दिन मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस उन सभी प्रवासी श्रमिकों को सम्मान और धन्यवाद देने का दिन है जो अपने परिवारों और समाज के विकास में अमूल्य योगदान दे रहे हैं।

0: हिंसा से सनी राहें अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुआ धारा रे हम बोले रुआड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये
3: मोर नाम मंगल राय को गाँव बारगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउका कहाँ मना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे हतो तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो हम बात हो जाए है
5: नितुम बुरान सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिनापाम तपाम वहा बेटा मिटका
6: अंजा नुम बुम्बई को पटन गुंडे को अंजा हम कोदमी को पटन पटन कितमी को उड़ीन बागेत सीआरपी को पुलिस को लड़ाई चलावतना बुरुम गई अंत जय तेरे का गुन बुको को मिले
7: अली मुनि सुरन पे अपील जा हुरारे मिनाई रो जिता हुरारे मिनाई रो तो बुगिन हुराते ससन का है वागे बेटा उरन का
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
9: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: స్వయం ఇది కట్టుపడే భారతీయ సేనా.
1: और अब इस अंतराल के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है. और कार्यक्रम विविधा में अब हम बात करने वाले हैं विश्व समुद्री कछुआ दिवस. श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष 16 जून को विश्व समुद्री कछुआ दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है समुद्री कछुओं के संरक्षण, उसके महत्व तथा उनके सामने मौजूद खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना. यह दिन प्रसिद्ध जीव विज्ञानी आर्ची कार की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया. समुद्री कछुए पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं. श्रोताओं, समुद्री घास और प्रवाल भित्तियों को के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करते हैं. समुद्री जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके लिए कुछ खतरे इस प्रकार हैं: प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, मछली पकड़ने के जाल में फंसना, तटीय क्षेत्रों का अतिक्रमण होना, जलवायु परिवर्तन होना और इसका अवैध शिकार और अंडों की चोरी. समुद्री कछुए पृथ्वी पर लगभग 10 करोड़ वर्षों के से भी अधिक समय से मौजूद हैं. दुनिया में समुद्री कछुओं की 7 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है. ये हजारों किलोमीटर की समुद्री यात्रा कर अपने जन्म स्थल

तट पर अंडे देने फिर से लौट आते हैं। तो श्रोताओं, समुद्री कछुआ दिवस पर हम कहना चाहेंगे कि समुद्र को प्लास्टिक मुक्त बनाएं, समुद्री कछुओं का जीवन बचाएं, प्रकृति के इस अनमोल धरोहर का संरक्षण हम सबों की जिम्मेदारी है। कछुओं को बचाएं, समुद्र को स्वच्छ बनाएं और आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रकृति की विरासत सजाएं। और अब सुनते हैं श्रोताओं इस कार्यक्रम में ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नंदी दुगल और साथियों के स्वर में ये गीत। इसी के साथ हमारा आज का विविधा कार्यक्रम संपन्न होता है।

कार्यक्रम रसरंजन का पहला गीत श्रोताओं हमने लिया है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू का गाया। फिल्म का नाम है जान की कसम। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: और इस संदेश के बाद श्रोताओं सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन। तो गीत पेश है के का गाया हेट स्टोरी 2 का।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन, और अब सुनवा रहे हैं रस रंजन का अगला गीत फिल्म मोहरा से। आनंद बख्शी का लिखा, बिजू शाह के संगीत निर्देशन में, कुमार सानू का गाया।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय

0: स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: और अब श्रोताओं, सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है चाहत। निदा फाजली का लिखा ये गीत सुनते हैं अनु मलिक के धुन पर, साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में।

और इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन समाप्त होता है। आप सुन रहे थे चाहत फिल्म का ये गीत, साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत लिखा था निदा फाजली ने, संगीत दिया था अनु मल्लिक ने। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब श्रोताओं प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओ, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओ, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओ, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओ, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
3: साथियों नमस्कार।
4: नमस्कार साथियों,
3: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
4: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा

0: 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
0: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी, बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हाँ हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ।
4: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
2: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो?
5: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
2: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ। सू,
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉनसी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
5: 6, now it's 6, 5, 4, oh!
2: जॉनसी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉनसी।
5: Only 4.
2: मेरी तरफ देखो।
5: सू, only 4. ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
2: क्या 3 बचे हैं? What's 3, dear?
5: 3 पत्तियां।
2: पत्तियां?
5: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
2: हाँ,
5: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
2: क्या लगता है?
5: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
2: क्या जॉनसी?
5: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
5: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। सू,
2: हाँ?
5: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
2: ओ जॉनसी,
1: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
0: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
1: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
0: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
6: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
1: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
0: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
5: ओह, अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
1: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
6: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
0: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम 1 पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
5: ओह, आखिरी पत्ता

0: अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
0: सू, मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
0: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
0: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
0: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
0: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
0: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
0: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ
0: हाँ,
3: मैंने देखा। मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
0: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
0: हाँ।
2: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी।
0: हम्म,
3: कैसा महसूस कर रही हो?
0: बेहतर।
3: ये लो, कॉफी पियो।
0: हम्म, थैंक यू
3: जॉन्सी।
0: हम्म,
3: एक बुरी खबर भी है।
0: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
0: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
3: हाँ।
0: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
3: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
3: हाँ वही, मिस्टर बेरमैन।
0: ओह गॉड,
3: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
0: क्या?
3: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
0: क्यों नहीं गिरा?
3: हाँ,
0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सु?
1: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
3: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
3: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
3: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
3: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
3: नहीं।
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
3: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
3: हाँ जॉनसी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
3: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
3: हाँ,
0: मास्टरपीस।
3: हाँ,
0: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
1: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

राग आनंद में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। ये थे हमारे आज कुछ खास प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखें, सवाल पूछें। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सबका कार्यक्रम जोहार रांची में। मैं हूँ रचना और मेरे साथ है
2: विनीता।
1: जी हाँ, एक बार फिर से हम दोनों आपके साथ हैं। तो विनीता कैसी हैं आप?
2: एकदम ठीक। तो आपको भी नमस्कार और हमारे श्रोताओं को भी नमस्कार। जोहार है ना
1: जी।
2: और
1: बिल्कुल,
2: कैसी हैं आप?
1: हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और हम ये भी कामना करते हैं कि हमारे श्रोता भी स्वस्थ हो।
2: बिल्कुल, और वो स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, तभी तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से सुन सकेंगे ना।
1: बिल्कुल सही बात है,
2: हम उन्हीं के लिए तो लेकर आते हैं।
1: हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम है, उन्हीं के लिए लेकर आते हैं। ढेर सारी बातें भी करते हैं, लेकिन बातें करेंगे हम बाद में, पहले सुनते हैं एक गीत।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत हमने सुना, और ये सच में इतनी सी खुशी, मतलब खुशी अगर जीवन में हो ना तो जिंदगी बहुत ही हंसी हो जाती
1: और
0: है।
1: आसान भी हो जाती है ना, छोटी छोटी बातों में ही खुशियां हमें ढूंढनी
0: ढूंढनी
1: चाहिए,
0: चाहिए
1: है ना।
0: बिल्कुल। हम सोचते हैं कि बड़ी खुशी आएगी, उसका इंतजार करते थे, लेकिन उन्हीं में हम छोटी छोटी जो खुशियां होती है उसको हम नजरअंदाज
1: बिल्कुल,
0: करते
1: और खोते
0: हैं।
1: चले जाते हैं जिंदगी की सच्चाइयों को, है ना।
0: तो चलो कार्यक्रम में बढ़ते हैं विचार की तरफ। तो जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कठिनाइयां, बाधाएं, असफलताएं या अप्रिय घटनाएं ना आई हों। किंतु मनुष्य की महानता इस बात में नहीं है कि उसके जीवन में कितनी समस्याएं आई, बल्कि इस बात में है कि उसने उन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार किया।
1: बिल्कुल, तो जो व्यक्ति बीती हुई घटनाओं के बोझ को अपने मन में ढोता रहता है, वो वर्तमान की संभावनाओं और भविष्य के अवसरों को खो देता है। अतीत से सीख लेना बुद्धिमानी तो है, लेकिन उसमें उलझे रहना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी बाधा है।
0: सही कह रही हो। और बीती हुई घटनाएं बदली नहीं जा सकती, इसलिए उनके बारे में हमेशा चिंतन

0: पूछते रहना यह केवल दुख, निराशा और मानसिक अशांति को ही जन्म देता है।
1: बिल्कुल, और इसलिए तो विवेकपूर्ण जीवन वही है जो बीती बातों से शिक्षा लेकर उन्हें वहीं छोड़ दे और नई आशा, नई संकल्प और सकारात्मक चिंतन के साथ आगे बढ़ते जाए।

0: विनीता, तो अब बातें कर लेते हैं हम मौसम की।
1: हाँ सचमुच वैसे मौसम पहले से थोड़ा तो ठीक हुआ है, तो आगे का हाल हम बताते हैं श्रोताओं को।
0: वैसे ऐसे बताया गया है कि झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून 2 दिन तक कमजोर स्थिति में रहेगा, और अब इसके आकलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि कैसा मौसम आगे रहेगा। वैसे तो मौसम हमें बताया जाता है कि आज बारिश हो रही है और कभी नहीं भी होती है, और जब हम आशा नहीं करते हैं कि आज बारिश नहीं होगी तो उस समय बारिश हो जाती
1: सचमुच
0: है,
1: यानी कि मौसम के बारे में कुछ भी सही से कह
0: कहना।
1: पाना थोड़ा सा तो मुश्किल है। और मानसून विभाग ने बताया कि धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा के पूरे इलाके और गिरिडीह के आसपास, रांची के कुछ हिस्सों में, रामगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है, यानी कि बस 2-4 दिनों की देरी है।
0: हाँ, वैसे मानसून दस्तक दे चुका है। अभी जब हुई थी बारिश पिछले 2 दिनों में तो बहुत जोरदार बारिश हुई थी, और बारिश जब होती है इतनी तेज होती है तो काफी मुश्किलें भी आ जाती हैं। कहीं पे पानी जमा हो जाता है और उसके कारण कहीं सड़कें भी धस जाती हैं, तेज हवा चलती है तो पेड़ पौधे गिर जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो जाती
1: बहुत
0: है उस
1: सारी
0: टाइम।
1: चीजें हो रही हैं और मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि वज्रपात होने का भी अनुमान है ज्यादातर, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें। अगर तेज बारिश के आसार लग रहे हैं या हो रही है तो आप अगर काम ना हो तो बाहर ना
0: ना
1: निकलें,
0: निकले।
1: और अगर बाहर है भी तो किसी ऐसी जगह पे आप रुकें जहां पे आप इससे बच सकें।
0: किसी सुरक्षित जगह को आप चुने इससे बचने का। फिलहाल तो मौसम ऐसा ही चलता रहेगा, कभी बारिश कभी धूप, तो इस मौसम का आप आनंद लेते रहें और साथ ही साथ हमारे साथ इस गीत का भी आनंद लें।

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब इतिहास की बातें करते हैं। तो अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज का दिन यानी 16 जून का दिन क्यों
1: क्यों
0: खास
1: खास
0: है।
1: था?
0: तो 1858 में आज ही के दिन प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोरार की लड़ाई लड़ी गई थी और 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना भी हुई थी
1: और 1911 में IBM कंपनी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई। पहले इसका नाम कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी था।
0: और अगर 1963 की बात करें तो आज ही के दिन यानी 16 जून के दिन ही रूस की 26 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री लेफ्टिनेंट वैलेंटिना तेरेश्कोवा ने वोस्तोक 6 के जरिए अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। वे अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों की ओर रवाना हुई विश्व की पहली महिला थी।
1: और आज ही के दिन 1983 में छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी और 2007 में ही एड्स पर जागरूकता फैलाने के लिए शिल्पा को सिल्वर स्टार अवार्ड से नवाजा गया था।
0: और 2008 में आज ही के दिन मशहूर शायर वसीम बरेलवी को प्रथम फिराक गोरखपुरी पुरस्कार प्रदान किया गया और विश्व में इस्पात बनाने की सबसे बड़ी कंपनी आर्सेलर मित्तल ने अमेरिकी कंपनी बंबू स्टील का अधिग्रहण किया।
1: और आज ही के दिन 2012 में चीन ने अंतरिक्ष यान सैंगशो 9 लॉन्च किया और 2012 में ही अमेरिकी वायुसेना का रोबोटिक बोइंग X-37B अंतरिक्ष यान अपना मिशन पूरा कर पृथ्वी पर वापस लौटा था।
0: और 2012 की बात करें तो 2012 में बहुराष्ट्रीय शीतल पेय कंपनी कोका कोला ने म्यांमार में 60 वर्षों के बाद कारोबार शुरू

0: तो रचना, अब आज की बातें हो रही हैं तो उनकी भी बातें करते हैं जिनका है आज जन्मदिन। तो रोहित श्रीवास्तव, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध चिकित्सा वैज्ञानिक थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन 1976 में हुआ था।
1: और 16 जून 1931 को डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा का जन्म हुआ था। वे एक आईपीएस अधिकारी थे।
0: 1918 में स्वतंत्रता सेनानी और दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1900 में कन्नड़ साहित्यकार ए एन मूर्ति राव का भी जन्म हुआ था।
1: प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेश कांत का जन्म भी आज ही के दिन यानी 16 जून 1956 को हुआ था।
0: और 1950 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का भी जन्म हुआ था,
1: जिनको हम डिस्को डांसर के नाम से भी जानते
0: जानते
1: हैं।
0: हैं।
1: और 1920 में हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का जन्म भी हुआ था।
0: वैसे तो इनके गानों की लिस्ट काफी लंबी है, पर चलिए सुनते हैं एक।
1: उन्हीं का गाया खूबसूरत सा
0: बिल्कुल
1: गीत।

0: बातें हो रही हैं आज के दिन की, तो अब बातें उनकी जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। तो 1925 में महान स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का निधन हुआ था
1: और 1944 में 16 जून को प्रफुल्ल चंद्र रॉय का भी निधन हुआ था। वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्हें रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है।
0: और 1999 में राजस्थान के भूतपूर्व दूसरे मुख्यमंत्री सीएस वेंकटाचार का निधन हुआ था। और 2015 में भारतीय वास्तुकार और शहरी नियोजक चार्ल्स कोरिया की मृत्यु भी हुई थी।
1: और आज ही के दिन 2021 में भारतीय सिने अभिनेता चंद्रशेखर वैद्य इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्हें मुख्यतः चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इनकी कई फिल्में हैं, लेकिन उन्हें मुख्य पहचान रामानंद सागर के टीवी धारावाहिक रामायण के उनके किरदार आर्य सुमंत के कारण मिली थी।
0: और वैसे भी उस समय रामायण जो था बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल हुआ करता था, और उसके एक एक पात्र को हम बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। और चंद्रशेखर का अभिनय करियर सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए। उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया, बरसात की रात, कटी पतंग, द बर्निंग ट्रेन, नमक हलाल, डिस्को डांसर, शराबी जैसी फिल्मों में काम किया। तो सुनते हैं शराबी ही फिल्म का एक गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா।
1: एक बार फिर से स्वागत है हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम जोहार रांची में। तो विनीता अब आगे बात हम करते हैं, क्या बातें करनी है,
2: घूमने फिरने की थोड़ी सी कर लेते हैं।
1: हाँ, ये भी जरूरी है,
2: बहुत जरूरी है,
1: छुट्टियां भी हैं, तो इस समय हमको, हम हमेशा बताते हैं इस कार्यक्रम में घूमने की बात,
2: बिल्कुल, और जरूरी भी है ना, कि क्या होता है ना कि ये हर दिन के बिजी लाइफ से थोड़ा सा पल अगर निकाल ले तो बच्चे भी खुश, फैमिली भी खुश और खुद में तो अच्छा लगेगा ही।
1: और एक बार फिर से हमारा जो मन है ऊर्जा से भर जाता है, नया जोश आ जाता है, तो हम जो
2: रिचार्ज हो जाते हैं,
1: तो हम जो काम को करने में पहले हमको आलस आ रहा था या सोचते थे कि नहीं करेंगे, तो उसको फिर हम पूरे जोश के साथ दोबारा से करने लगते हैं।
2: तो आज किस जगह की सैर कराने वाली है?
1: तो आज हम बात कर रहे हैं सरथल की, जो कि समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और घास के विशाल मैदान, घने देवदार के जंगल और कुदरती नजारों के बीच पल पल बदलता मौसम।
2: आपने इतने अच्छे से बताया है कि अब तो सचमुच जाने का मन हो रहा है। और साथ ही आपको बताएं कि ये नेचर प्रेमियों के लिए ये स्थान किसी जन्नत से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सरथल के खूबसूरत पहाड़ और वादियां अभी भी वैसा फेमस नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप हमें जरूर याद करेंगे कि हमने बताया,
1: ज्योति खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
2: तो यहाँ क्या क्या जगह है घूमने की, ये भी हम उन्हें बता देते हैं। तो सुंदर वादियां, बहते झरने, पहाड़, ये सब तो है ही, साथ ही है यहाँ सेवन फॉल, है ना। गर्मी की छुट्टियां होने की वजह से यहाँ पे
1: बहुत लोग
2: आते हैं और काफी भीड़ रहती है, तो आप ये सेवन फॉल देखने का आनंद भी आप ले सकते हैं। ये एक ऐसा वाटरफॉल है जिसमें 7 झरने हैं। इसे देखने के लिए पहाड़ी पगडंडियों पर करीब 7 किलोमीटर सैर करनी होती है, और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप ट्रेकिंग करना चाहते हैं तो ये अच्छा अवसर है आपके लिए।
1: बिल्कुल, और करीब 23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले सरथल का अर्थ है धरा पर स्वर्ग। यहाँ मई से सितंबर तक का मौसम जो है वो बेहतर रहता है। चारों ओर हरियाली, रंग बिरंगे पंछी, जंगली जानवरों की आवक, और मात्र कुछ किलोमीटर पर बर्फ से लदे पहाड़ और प्रदूषण मुक्त स्वच्छ हवा। ये तो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हवा ही तो हमें स्वच्छ नहीं मिल पा रही है।
2: तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस जगह पे जाएं, और जैसा कि रचना ने बताया कि मई से लेकर सितंबर तक, यानी कि ये समय सही है आपके जाने के लिए।
1: और वैसे भी यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, तो अगर आप उस जगह पे जाएंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, अच्छे से आप सब जगह घूम भी पाएंगे।
2: बिल्कुल, और वहाँ ठहरने की भी सुविधा है, तो ऐसा मतलब बहुत ज्यादा होटल तो नहीं है, लेकिन जो भी है सस्ते और महंगे दोनों तरह के, तो आपको जो भी सूट करे आप वहाँ पे बुक करा सकते हैं।
1: और वहाँ पर पहुँचे कैसे? तो कठुआ से सरथल करीब 185 किलोमीटर है, आप अपने वाहन से भी वहाँ जा सकते हैं, या फिर कठुआ से लखनपुर बसोहली होते हुए बनी पहुँचा जा सकता है। वहाँ से सरथल 25 किलोमीटर दूर है, और रास्ते में जो भी सीन आएंगे, जो भी समुद्र आएंगे, जो भी हरियाली आएगी, आप हंसी वाली आएगी, उसको देखते हुए आप जा सकते हैं और अपने जो है सफर का आनंद ले सकते हैं।
2: तो एक बार जरूर जाएं, छुट्टियां भी बाकी है तो आप जा सकते हैं और इस खूबसूरत से जगह का आनंद ले सकते हैं।
1: वहाँ की पहाड़ भरी जो वादियां हैं और हसीन वादियों का आप आनंद ले सकते हैं।

0: इतनी खूबसूरत सा गीत था और इतना
1: हाँ
0: अच्छा हमने बात किया था कि हम लोग इस गाने के
1: खो
0: साथ साथ
1: गए थे
0: लगता
1: ना
0: था कि वहीं पहुंच गए
1: सचमुच।
0: चलो
1: तो
0: तब आगे बढ़ते।
1: अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हमने कर ली आज के खास दिन की, घूमने फिरने की, सुविचार की, सब कर ली। लेकिन एक जरूरी बात हम और करने वाले हैं। एक दिवस आने वाला है, योग दिवस है ना, जो हम 21 जून को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस वर्ष का थीम है स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए, स्वस्थ
0: योग।
1: वृद्धावस्था के लिए योग।
0: हाँ,
1: वैसे वृद्धावस्था क्यों कहें हम, योग तो हर उम्र के लिए
0: हर उम्र के
1: जरूरी
0: लिए जरूरी है
1: है ना।
0: जो, जैसे कई बोलते हैं ना हम लोग कि नहीं 50 के बाद जो है योग नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, 50 के बाद भी आप योग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: वैसे तरह
1: बिल्कुल।
0: से आप योग नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ हल्के फुल्के योग हैं वो जरूर से आपको करने चाहिए।
1: कहने का मतलब कि अगर कम उम्र से ही अगर हम आधे घंटे योग करने की आदत डाल लें तो कई बीमारियों से हम बच सकते हैं।
0: ये बात भी सही है। और देखो क्या होता है कि सब तो कर लेते हैं घर में, हम महिलाएं जो होती हैं सबका ध्यान भी रखती हैं, सबको बोलती भी है कर ले, लेकिन जो महिलाएं अपने
1: खुद नहीं
0: ऊपर
1: करती
0: ध्यान
1: है।
0: नहीं
1: हाँ
0: देती
1: बिल्कुल।
0: हैं। और ये भी कहना चाहेंगे कि जो अगर घर की महिला अगर स्वस्थ रहती है ना तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है।
1: बिल्कुल। और ज्यादा कुछ नहीं, जो जैसा कि हम सब जानते हैं सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, ये सब अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। कई बीमारियां मतलब कि हृदय, पेट, घुटना, मसल, सबको ठीक रख सकते हैं सिर्फ एक योग करके, सूर्य
0: सूर्य
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: अगर आप 5 बार या 10 बार, बहुत समय ना हो तो 5 या 10, उससे उतना भी करेंगे तो आपको इन सब बीमारियों से राहत मिल सकती है।
0: देखो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमको करनी चाहिए। और वैसे भी महिलाओं में, यानी कि हम महिलाओं में ज्यादातर क्या होता है आजकल, थायराइड की समस्या बहुत
1: बिल्कुल
0: बढ़
1: बिल्कुल।
0: रही है, तो इसलिए थायराइड की समस्या है तो आप योग कर सकते हैं। इसमें भ्रामरी जो है वो भी अच्छा एक योग है आपके लिए, आपकी थायराइड ग्रंथि को वो ठीक रखता है। तो अनुलोम विलोम, ये जो छोटे मोटे योग हैं ये आपको जरूर करने चाहिए, चाहे कोई भी हो, महिला हो, बच्चे हो, या बुजुर्ग हो, या कोई भी एज के हो, उन्हें योग जरूर करना चाहिए। कम से कम आधे घंटे का तो समय हमें अपने लिए निकालना ही
1: बिल्कुल निकालना
0: चाहिए।
1: चाहिए। और हमने कई बुरी आदतें पाल ली हैं देर रात तक मोबाइल देखने
0: बिल्कुल,
1: की
0: क्योंकि ये मोबाइल के चलते ही हमारे साथ सब कुछ जो है ना गड़बड़ हो रही है।
1: बिल्कुल। और इससे क्या हो रहा है कि नींद नहीं पूरी हो रही है।
0: क्योंकि
1: तो
0: अगर एक बार आप मोबाइल पे बैठ जाते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कितना समय बीत चुका
1: बिल्कुल,
0: है।
1: तो आधे घंटे का ध्यान मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपको नींद की बीमारी से भी राहत मिल सकती है। तो बहुत सारे फायदे हैं योग के, तो सिर्फ 21 जून को ही नहीं, आप हर दिन इसे
0: रूटीन में
1: अपने
0: अपना
1: हाँ
0: शामिल
1: शामिल करें।
0: करें, क्योंकि ये आपको तनाव से भी बचाता है। देखो वनिता, हम बातें करते करते कार्यक्रम के अब अंतिम क्षण पर पहुंच चुके हैं। हमारी जो घड़ी है वो बोल रही है कि आपका समय अब खत्म होने जा रहा है।
1: तो बिल्कुल। तो
0: योग के साथ साथ हमारे श्रोता अपने सेहत का भी ख्याल
1: ख्याल
0: रखें।
1: रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और हम फिर मिलेंगे जल्दी इस वादे के साथ। हम उन्हें करते हैं जोहार,
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं आपकी ही पसंद के गीत। तो पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में, फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म का गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। सुनना चाह है ग्राम बड़बुड़िया पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। आप हैं बिहे आरा से सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतीक केशरी, थाना रोड बक्सर से उमानंद केशरी, धनानंद केशरी और विनोद केशरी।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: इस संदेश के बाद फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी पसंद में, और अगला गीत सुनना चाहे रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से, अभिजीत गनवानकर, श्रीमती सरिता गनवानकर, प्रिंस एकांश गनवानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गनवानकर, प्रणीता गनवानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गनवानकर, श्रीमती वैशाली गनवानकर, श्वेता सुमित गनवानकर, कुमारी ध्वनि गनवानकर, ये सब सुनना चाहते हैं बदलापुर फिल्म का ये गीत। दिनेश विजान के बोल हैं, सचिन जिगर का संगीत है और इस गीत को गाया है आतिफ असलम ने।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में, और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म है गुलाम। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं जतिन ललित, और सुनना चाह है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तानी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित, मोहित और महादेव।

अगला गीत सुनना चाह है कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। आप है गोंदा टाउन काके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, भीम सिंह, सिद्धि जायसवाल, अनुप्रिया और भगत ये सुनना चाहते हैं हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का ये गीत। आवाज है अभिजीत और श्रेया घोषाल की, इरशाद कामिल के बोल हैं, शारिब तोशी का संगीत।

इसी गीत के साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 12 बजे हैं और वक्त है महिलाओं के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृह।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार सभी आप सभी बहनों का स्वागत है। आपके साथ है आपके सखी सुभाषिनी और रानी। रानी, कार्यक्रम में बहनों के लिए आगे क्या है वो बताओ।
5: बहनों, अब आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता, परिवार को एक सूत्र में बांधती रसोई। इस विषय पर आज हमें जानकारी दे रही हैं सविता जैन और इनसे बातचीत कर रही हैं आपकी रेडियो सखी सुभाषिनी।
6: मोती चाहे जितने भी खूबसूरत हो, जब तक वो धागे में पिरोए नहीं जाते बिखर जाते हैं। इसी तरह परिवार भी आपसी प्रेम और विश्वास का वह धागा है जो सबको जोड़ कर रखता है। आधुनिक भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने कमरों में सिमटते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान या यूं कहें कि एक ऐसा सूत्र है जो आज भी परिवार को जोड़ कर रखता है और वो है हमारी रसोई। परिवार को एक सूत्र में बांधती रसोई, इसी विषय पर आज गहराई से बातचीत करने के लिए हमारे बीच है एक खास मेहमान सविता जैन, और वो खास इसलिए हैं क्योंकि उनका फुल टाइम काम जो सुबह आंख खुलते ही शुरू होता है और रात को आंखें बंद होने पर ही खत्म होता है। जी हाँ बहनों, वो है एक कुशल गृहिणी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। सविता जी, हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। नमस्कार।
7: नमस्कार सुभाषिनी जी, आपको भी।
6: सविता जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में जब लोग डाइनिंग आउट या कहें कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी को ज्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे में आप रसोई को किस नजरिए से देखती हैं? यानी आपके लिए रसोई क्या मायने रखता है?
7: सुभाषिनी जी, आपका ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं तो ये कहना चाहूंगी रसोई पर कि मेरे लिए तो रसोई सिर्फ ईंट पत्थरों और बर्तनों से बना एक कमरा नहीं है, बल्कि यह वह पवित्र स्थान है जहाँ पर हम सब परिवार के सदस्य जुड़ते हैं, और ये वो जगह है जहाँ ऊर्जा और सेहत मिलती है। और आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि घर का रास्ता उसके रसोई से होकर जाता है। और जहाँ तक बाहर से खाने पीने की बात आपने पूछी है, तो मैं बताऊंगी कि आज की लाइफ स्टाइल के अनुसार मैं इसे पूरी तरह से गलत नहीं मानती, क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए या बस उस समय सहूलियत होती है, आपको बना बनाया खाना आसानी से मिल जाता है। लोग कभी परिवार में किसी को कुछ परेशानी आ गई, खाना बनाने की इच्छा नहीं हुई, तो इस समय के लिए ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसे एक आदत नहीं बना लेना चाहिए।
6: बिल्कुल,
7: हम बाहर से खाना मंगाते हैं वो तो सिर्फ पेट भरता है, मन नहीं। लेकिन जब रसोई में खाना पकता है तो उसमें मसालों के साथ साथ माँ का, पत्नी का या बहन का प्यार भी उसमें खुलता है। सुबह की पहली चाय की खुशबू से लेकर रात के आखिरी दूध के गिलास तक रसोई पूरे घर को एक लय में चलाती है। और वो बता दूं कि जब घर के लोग रसोई के आसपास इकट्ठा होते हैं तो वहाँ केवल खाना ही नहीं बनता, वहाँ बहुत तरह की बातें भी हम लोग करते हैं और अपने मन की बातें हम साझा करते हैं। इसीलिए रसोई मेरे लिए एक मंदिर की तरह है जहाँ परिवार की सेहत और खुशहाली साथ साथ जुड़ी होती है।
6: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बातें बताई आपने सविता जी, और बिल्कुल सच है। लेकिन आज की जीवन शैली बहुत भाग दौड़ भरी हो गई है। पति ऑफिस में व्यस्त हैं, बच्चे कोचिंग या तो स्कूल में, और कई महिलाएं भी खुद कामकाजी हैं, तो ऐसे में रसोई सबको एक साथ लाने का काम कैसे कर पाएगी?
7: तो बिल्कुल सच है सुभाषिनी, आपकी जो ये सवाल आपने किया है। लेकिन आज की जीवन शैली बहुत भाग दौड़ भरी हुई है, समय की बहुत कमी है, लेकिन भूख ऐसी चीज है जो सबको रसोई की तरफ खींच ही लाती है। और मेरे अपने घर में एक ऐसे मैंने नियम ही बना दिया है, चाहे दिन भर कोई भी कितना व्यस्त रहे, रात का खाना एक साथ बैठ कर ही खाएंगे। पहले जमाने में कितना अच्छा था ना कि सब लोग, आज तो डाइनिंग टेबल पर बैठ के लोग खा रहे हैं, लेकिन पहले सब जमीन में बैठकर पास में बैठकर खाना खाते थे। वो दिन बिल्कुल याद आते हैं तो लगता है क्यों ना वो दिन फिर से वापस ले आऊं। बच्चे दिन भर की अपनी शरारतें या स्कूल की बातें बताते हैं, और जो पति हैं जो ऑफिस में जाते हैं वो अपनी वहाँ की बातें बताते हैं, हल्के फुल्के मजाक भी चलते हैं, और एक घंटे के दौरान सब अपने, जो आजकल लोग खाना भी खाते हैं तो मोबाइल देखकर, लेकिन वो सबका दूर हो जाता है थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन चलो इसी बहाने मोबाइल से भी दूरी बनी और परिवार भी हम लोग इकट्ठे हुए। परिवार में चाहे हम कभी ऐसा भी कर सकते हैं सुभाषिनी जी कि अगर आपके परिवार में दादा दादी हैं और आप एक ही शहर में रहते हैं, तो ऐसा भी करिए कि सप्ताह में एक दिन दादा दादी चाचा चाची के साथ डिनर कीजिए, तो वो आपको चाचा चाची के करीब लाता है, दादा दादी जी से जो दूरी बन जाती है वो आपके करीब आते हैं, तो आपका प्यार उनके प्रति बढ़ता है और उनका भी प्यार आपके प्रति बढ़ जाता है। तो ये जो रसोई है ना, सचमुच लोगों को एक डोर में बांधती है।
6: बहुत ही सुंदर बात कही आपने। और सविता जी, जब कोई पार्टी या फंक्शन है, या मान लीजिए

0: त्योहार भी आते हैं, जैसे दिवाली हो गई, दुर्गा पूजा, तब तो रसोई में यानी खाने पीने में बदलाव करने होते हैं, साथ ही काम भी बढ़ जाता है हम महिलाओं का। तो उस समय आपका क्या अनुभव रहता है? क्या तब भी आप कहेंगी कि रसोई परिवार को बांधती है?
1: आपने जो सवाल किया है कि रसोई बांधती है, बिल्कुल बांधती है। परिवार में तो त्योहारों का एक अलग ही महत्व होता है। जब त्योहार आने वाला होता है तो उससे पहले की जो खुशियां होती है उसके कोई कहने नहीं।
0: जी
1: और आपको ये भी बता दूं कि जब आपको उसकी जो स्वाद है ना, तरह तरह के लोग नमकीन बनाते हैं, पूजा हो या दिवाली हो, तब रसोई में यानी खाने पीने में बदलाव करने होते हैं,
0: बिल्कुल
1: भी बढ़ जाता है। उस समय का आपका अनुभव जो है ना वो बहुत ही खास होता है। त्योहार
0: जी
1: के समय तो रसोई एक अलग ही माहौल हो जाता है। जाहिर सी बात है कि काम तो बढ़ ही जाता है। और मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। पिछली दिवाली पर कुछ जब मुझे बनाने बोला गया गुजिया और मटरे, तो मैं बना रही थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे अपनी पुरानी रेसिपी बताई।
0: अच्छा
1: पता नहीं वो कि हमारे समय में कैसे बनते थे, वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। और तुम
0: बिल्कुल
1: उसी अनुसार बनाओ। मेरी बेटी ने मैदा गूंदने में मदद की और मेरे पति ने, जो आमतौर पर रसोई में नहीं
0: जी
1: जाते, वो भी गुजिया तलने के लिए चले आए हमारे साथ।
0: बिल्कुल
1: बच्चों का काम था कि बनी हुई मिठाइयों को डिब्बों में सजाएं उसे ठंडा करके। और आप सोचिए, उस छोटे से स्पेस में 3 पीढ़ियां एक साथ काम कर रही थी।
0: बहुत सही
1: वहां का जो हंसी मजाक वो एक अलग ही आनंद है। तो इसीलिए त्योहारों की असली आनंद पकवान खाने में नहीं, बल्कि उसे सब मिलकर बनाने में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं है। यही वो पल होते हैं, वे बच्चों के मन में जीवन भर के लिए मीठी यादें बनकर रह जाती है। और बच्चे भी अच्छे संस्कार सीखते हैं, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: वो भी तो आज हमारे साथ हैं, छोटे हैं, लेकिन वो लोग अपनी माँ को जो काम करते देख रहे हैं, दादी को जो करते देख रहे हैं, वो फिर अपने जीवन में भी उन्हें सार करेंगे। आज न कल उनके भी घर द्वार बसेंगे। तो इसीलिए बच्चों को जरूर शामिल करिए। मैं तो यही कहूंगी, बच्चों को ये बात बताएं कि त्योहारों की जो पकवाने बनती हैं, मिठाइयां बनती हैं, उसे तुम भी सीखो।
0: बिल्कुल
1: और तब शायद बच्चे जो है ना बाजार से उतना नहीं मंगाएंगे।
0: जी
1: बाजार
0: जी
1: के स्वाद में बहुत अंतर होता है सुभाष ने जी।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और कहते हैं ना कि जो माँ जो होती है ना वो बच्चों की पहली शिक्षक होती है, और जो हमारा घर होता है वो पहला स्कूल होता है बच्चों के लिए। तो बिल्कुल आपकी बातें इस बात को सही साबित करती हैं कि बच्चे भी अच्छे संस्कार सीखेंगे, अच्छे गुण सीखेंगे। लेकिन सुधा जी, आजकल की नई पीढ़ी को लेकर अक्सर माता-पिता परेशान रहते हैं। बच्चों को घर की दाल रोटी से ज्यादा बाहर का पिज्जा बर्गर पसंद आता है। ऐसे में बच्चों को अपनी रसोई के स्वाद से कैसे जोड़ा जा सकता है? मुझे लगता है कि आपके पास इसका कोई नुस्खा जरूर होगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी बातें बता रही हैं हमें।
1: देखिए सुभाषनी जी, मैं यही कहूंगी कि ये तो हर घर की कहानी है। बच्चों से अगर आप कुछ बातें कर रहे हैं खाने पीने की, तो जरूर बोलेंगे कि मम्मा आज पिज्जा मंगाते हैं, आज मुझे बर्गर खाने का मन है, या फिर बाहर की चाउमीन। तो मैं उनको बोलती हूँ कि बाहर के खाने में तुम्हें क्या स्वाद मिलता है, तो बहुत टेस्टी बनता है।
0: बिल्कुल
1: चलो आज मेरे साथ रसोई में, और मैं जो बना रही हूँ वो बाहर के खाने से ज्यादा तुम्हें स्वादिष्ट मिलेगी। तो मैं अपने बच्चों को बाहर का खाना मंगाती हूँ, लेकिन उतना नहीं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर पिज्जा बनाना है तो मैं मैदे की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल करती हूँ, और उसमें ढेर सारी सब्जियां डालती हूँ, ताकि बच्चे उसे तोड़ेंगे तो वो सब्जियां तो उसमें गूंधी हुई आटे में वो तो फंसी रहेगी, उसी तो बाहर होंगी नहीं, इसीलिए वो फिर खाएंगे। और जब खाते हैं तो उन्हें फिर पसंद आता है, उसके लिए नुकसान भी नहीं है। तो इसके लिए मैं इस तरह से कर करके बच्चों को देती हूँ, क्योंकि मैं मतलब कहिए कि मैं गृहिणी तो हूँ, लेकिन एक और अलग तरह की गृहिणी हूँ, जो मैं किचन से कभी अपने आप को दूरी नहीं बनाती हूँ। मैं खार नहीं समझती हूँ कि मुझे खाना पकाना है मुश्किल है, ये नहीं। मैं किचन में हंस हंस कर जाती हूँ, बच्चों को भी एंजॉय कराती हूँ, बच्चे भी खूब खुशी से खाते हैं।
0: सविता जी, एक परिवार में तो कई सदस्य होते हैं और सबकी पसंद अलग-अलग होती है। बेटी हो गई, बेटा हो गए, पति हो गए, और किसी किसी परिवार में देवर भाभी या ननद भी रहते हैं, तीखा पसंद है तो किसी को नमक, किसी को मीठा पसंद है, तो इन सबकी पसंद का ध्यान रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, और क्या इससे परेशानी नहीं होती है?
1: चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन इसी में तो मजा है। जब मेरे मूड खराब होता है या बेटे का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो मैं बिना उससे पूछे उसकी पसंद की पनीर की सब्जी बना देती हूँ।
0: वाह।
1: और जब हस्बैंड दफ्तर में थक कर आते हैं दफ्तर से, तो फिर उन्हें अदरक वाली कड़क चाय मिल जाती है, उनकी आधी थकान तो यही मिट गई। और अगर आपको किसी की पसंद का खाना बनाना है तो असल में बिना बोले यह कहना है कि मैं आपकी परवाह करती हूँ।
0: जी।
1: उन्हें महसूस होता है कि इस घर में उनकी इच्छाओं का सम्मान है। यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को अंदर से मजबूत करती है। समाज में जी
0: कविता जी, आपकी बातें वाकई दिल को छू लेने वाली हैं। हमारे पास तो अभी वक्त बहुत कम है, लेकिन बातें आपसे करने में बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें लग रहा है कि आपसे ढेर सारी बातें करें। लेकिन सविता जी, चलते चलते आप हमारे, विशेषकर आज के आधुनिक परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: कहना चाहूंगी सुभाषिनी जी, रसोई को कभी भी एक बोझ या सिर्फ एक काम मत समझिए। यह आपके घर का ऊर्जा केंद्र है। इसमें कम से कम एक दिन ऐसा रखिए जब पूरा परिवार मिलकर कुछ पकाए, चाहे वो सिर्फ मैगी या सैंडविच ही क्यों ना हो। रसोई में साथ बिताया गया समय आपके आपसी मतभेदों को भुला देता है। याद रखिए, जिस घर की रसोई में खाना नहीं प्यार बनता है, तो फिर आप देखेंगे कि उस घर की दीवारें हमेशा खुशियों से गूंजती रहती हैं।
0: खूब, बहुत ही सुंदर बातें आपने कही। और सविता जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और सचमुच हमारी बहनें भी इस बात से सहमत होंगी कि सविता जी ने जो बातें बताई, अपने अनुभव हमसे साझा किए, लगा कि सचमुच रसोई परिवार को एक सूत्र में बांधती है। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और अपने अनुभव साझा किए, अपनी बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थीं भेंट वार्ता, परिवार को एक सूत्र में बांधती रसोई इस विषय पर। भेंट वार्ताकार थीं सविता जैन, और इनसे बातचीत कर रही थीं आपकी रेडियो सखी सुभाषिनी।
0: और बहनों, हमारी आज की मेहमान ने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई, जानकारी दी, रसोई का जिक्र किया कि कैसे एक परिवार को रसोई जो है वो एक सूत्र में बांधती है। रसोई एक ऐसा ऊर्जा का स्थान है जहां भोजन बनता है, और आज हम अपनी जानकारी में भी आपके लिए भोजन से संबंधित ही कुछ जानकारी आपके लिए लाए हैं। स्वस्थ भोजन, स्वस्थ शरीर, इस विषय पर आज हम जानकारी आपसे साझा करेंगे। तो बहनों, कहते है कि पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया का सबसे बड़ा राज छिपा है हमारे भोजन में। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम स्वाद और जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं।
2: हाँ बहनों, जंक फूड, ज्यादा तेल मसाले और अनियमित खान पान धीरे धीरे शरीर को कमजोर बना देते हैं। बहनों, स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यदि तन स्वस्थ हो तो मन भी प्रसन्न रहता है और जीवन की हर जिम्मेदारी निभाना आसान हो जाता है।
0: और स्वस्थ शरीर की शुरुआत आपकी रसोई से ही होती है। तो बहनों, सेहत का असली राज दवाइयों में नहीं होता है, बल्कि हमारी थाली में छुपा होता है। हम जैसा भोजन करते हैं, हमारा शरीर भी वैसा ही बन जाता है।
2: हाँ, इसलिए भोजन हमेशा संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए। स्वस्थ भोजन का अर्थ केवल पेट भरना या महंगा खाना नहीं होता बहनों, बल्कि ऐसा भोजन देना है जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम और फाइबर संतुलित मात्रा में मौजूद हों।
0: जैसे हमारी जो हरी सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, फल, दूध, दही, अनाज और पानी भी, पर्याप्त मात्रा में पानी हमारे खाने में, ये सारी चीजें जरूर शामिल होनी चाहिए। ये शरीर को आवश्यक पोषण देते हैं और हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखते हैं।
2: हाँ, और इसके साथ ही समय पर भोजन करना बहुत जरूरी है बहनों। सुबह का नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये पूरे दिन के लिए ऊर्जा देता है।
0: और बहुत अधिक तला भुना या बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है बहनों। घर का बना ताजा और संतुलित भोजन ही सबसे बेहतर है। अपने खाने में सलाद और अंकुरित अनाज जो होते हैं उसको भी जरूर शामिल करें।
2: हाँ बहनों, और स्वस्थ शरीर के लिए सिर्फ अच्छा भोजन ही नहीं, थोड़ी शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है। रोज थोड़ी देर टहलना, योग करना या हल्का व्यायाम करना शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। क्यों सुभाषिनी?
0: बिल्कुल, तो याद

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: संदेश के बाद आप सबका स्वागत है फिल्म संगीत में। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में चलते चलते फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं केके की आवाज में। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने, संगीत से सजाया है प्रीतम ने, और आवाज है केके की।

कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राजू सिंह ने। फिल्म का नाम है राज और गायक कलाकार हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल।

ओम शांति ओम। आइए सुनते इस फिल्म का ये गीत। आवाज है के की। विशाल रडलानी ने इस गीत को लिखा है और विशाल और शेखर का संगीत है।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति

0: हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फ्रित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और भावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमता और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में निर्देश देने की सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने नीट की पुनर्परीक्षा को लेकर 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर लगाया बैन। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन का दिया निर्देश। कोल इंडिया की पहली कोल बेड मिथेन परियोजना के तहत झरिया में अगले एक साल में मिथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य। झारखंड हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के समय राज्य के विभिन्न जिलों में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में राज्य सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में रांची के चान्हो स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय को देशभर में पहला स्थान। राष्ट्रीय रैंकिंग में राज्य के 3 स्कूलों ने बनाई जगह। और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में भारतीय टीम ने जापान को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने नीट की पुनर्परीक्षा संपन्न होने तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। यह रोक 22 जून तक लागू रहेगी। इधर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा बैठक की। कल एक उच्च स्तरीय बैठक में गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। श्री मोहन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यूपीएससी ने बताया कि अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। भाजपा के मुख्य सचेतक से हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने दावा किया है कि झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत होगी। हजारीबाग में उन्होंने कहा कि नाथवानी 2 बार झारखंड से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने झारखंड को कई सौगातें दी हैं।
1: परिमल नाथवानी जी के लिए उनके वोटर 81 हैं। सभी पार्टियों से और सभी विधायकों से निर्दलीय प्रत्याशी को वोट मानने का लोकतांत्रिक अधिकार है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब 18 तारीख को वोट होगा और परिणाम आएगा तो परिमल नाथवानी जी विजयी होंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है।
0: कोल इंडिया की पहली कोल बेड मिथेन CBM परियोजना के तहत धनबाद के झरिया में अगले एक साल में मिथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना से हजारों करोड़ रुपए के राजस्व के साथ साथ घरेलू रसोई उद्योग और उर्वरक क्षेत्र को स्वच्छ ईंधन मिलेगा। BCCL के CMD मनोज अग्रवाल ने बताया कि मुनिडीह में CBM परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और अगले एक साल में व्यावसायिक उत्पादन का लक्ष्य है।
2: तो हमारे BCCL के बहुत सारे माइंस, गैसी माइन, कोल माइंस में बेड में जो मिथेन पाया जाता है उस मिथेन को निकाल कर अपने ऊर्जा के स्रोतों में हम ला पाए, इस दिशा में मुनिडीह में हमने लगभग 25 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार को चिन्हित किया है और गैस का निकलना भी शुरू हो गया है और इसका कमर्शियल यूज पाइपलाइन बिछा कर की विद इन 1 ईयर हम लोग इसको शुरू कर लेंगे और इसे लगभग 125 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू की प्राप्ति होगी।
0: झारखंड हाईकोर्ट में लॉकडाउन के दौरान रांची समेत कई जिलों में पेड़ों की अवैध कटाई मामले में राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट मांगी है। इस पर प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने समय की मांग की। अदालत ने इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तय की है। गौरतलब है कि रांची, पलामू, गढ़वा, जामताड़ा, चाईबासा आदि जिलों के जंगल से अवैध रूप से हजारों पेड़ काट दिए गए थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X handle @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में रांची के चान्हो स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय ने 99.20% अंक लाकर देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इस राष्ट्रीय रैंकिंग में झारखंड के 3 स्कूल शामिल हैं, जिनमें हजारीबाग का बिहारी बालिका हाई स्कूल 21वें और लातेहार का उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुरीसात 64वें स्थान पर रहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हजारीबाग के स्कूल को शौचालय और स्वच्छता प्रबंध और लातेहार के स्कूल को पेयजल और वर्षा जल संचयन में बेहतर कार्य के लिए सराहा है। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने कहा है कि करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे गया पुल अंडरपास का निर्माण तय समय से पूरा हो जाएगा। वहीं गोविंदपुर में 329 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर का काम भी समय पर पूरा होगा। सांसद ने कहा कि दोनों परियोजनाएं क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।
3: गया पुल चौड़ीकरण को लेकर लगातार धनबाद के लोग असमंजस की स्थिति में थे। कई एक बार टेंडर हुआ, मगर गुंडा माफियाओं के डर से लोग यहाँ टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किए, मगर हम लोगों ने जाकर अपने इस क्षेत्र के दर्द और भावना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के पास, अपने रेल मंत्री जी के पास हमने रखा और उन्होंने आश्वस्त किया कि डरने की बात नहीं है, मोदी जी है तो कोई भी काम नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है।
0: चतरा जिले में वन्य जीवों की सुरक्षा और वन पेड़ क्षेत्रों की प्रभावी गश्ती के उद्देश्य से वन्य जीव प्रबंधन योजना के तहत वनकर्मियों को 51 गश्ती बाइक उपलब्ध कराई गई है। इससे वनकर्मियों की पहुंच दूरस्थ वन क्षेत्रों तक आसान होगी। डीएफओ मुकेश कुमार ने कहा कि इससे अवैध कटाई, अतिक्रमण, वन्य जीव तस्करी तथा वन संपदा की चोरी जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण में सहायता मिलेगी। रांची नगर निगम ने मॉनसून के दौरान शहर में जल जमाव से निपटने की व्यापक तैयारी की है। निगम ने सर्वेक्षण के बाद शहर के 108 ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां बारिश के दौरान पानी जमा होने की संभावना रहती है। मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम ने 11 आधुनिक डी सिल्टिंग पंप खरीदा है, साथ ही 11 क्विक रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है।
4: 11 लोगों की टीम गठित हम लोगों ने किया है, जिसके माध्यम से जहां पर भी वाटर लॉगिंग हो रहा है वहां पर पूरे तैयारी के साथ पहुंच करके पानी कैसे निकाले उसके लिए वो प्रयास करेंगे। पर में जहां जहां वाटर लॉगिंग होगा वहां वहां ये फोर्स पहुंच करके त्वरित कार्रवाई करेगा।
0: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 307 अंकों की बढ़त के साथ 76,571 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी लगभग 75 अंकों की बढ़त के साथ लगभग 24,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज FMCG और IT के शेयर्स में अधिक खरीदारी हो रही है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपए प्रति किलो है। FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2025-26 में भारतीय महिला टीम ने जापान को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। भारत के लिए कप्तान सलीमा टेटे और लाल रेमसियामी ने 1-1 गोल किए। 6 अंकों के साथ पूल में शीर्ष पर चल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला 18 जून को उरुग्वे से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र ने नीट की पुनर्परीक्षा को लेकर 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर लगाया बैन। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन का दिया निर्देश। कोल इंडिया की पहली कोल बेड मिथेन परियोजना के तहत झरिया में अगले 1 साल में मिथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य। झारखंड हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के समय राज्य के विभिन्न जिलों में पेड़ों के अवैध कटाई मामले में राज्य सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में रांची के चान्हो स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय को देश भर में मिला पहला स्थान। राष्ट्रीय रैंकिंग में राज्य के 3 स्कूलों ने बनाई जगह। और FIH महिला हॉकी नेशंस कप में भारतीय टीम ने जापान को 2-0 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हमारा आगरा कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं ठुमरी। कलाकार हैं गिरजा देवी। बोल हैं कौन देश गए छबिलिया।

लोकशास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे गिरजा देवी से ठुमरी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं हरिहरन की गाई चंद गजलें।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, और सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं हरिहरन की गाई चंद गजलें।

सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी रांची है, 2 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।

0: This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Avignon, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till 22nd of this month ahead of NETUG retest, message editing feature to remain disabled till June 30th. Supreme Court seeks responses from centre and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storms into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit. This marks the Prime Minister's seventh consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th participation in this crucial multilateral event. This G7 summit holds immense strategic significance for India as the Prime Minister will strongly amplify the voice and concerns of the Global South on the world stage. French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister upon his arrival this evening. Following the reception, Mr. Modi will participate in a high-level working session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity. Earlier, Prime Minister Modi departed for France after concluding his visit to Slovakia. The Prime Minister said the outcomes of his visit to Slovakia will go a long way in strengthening bilateral ties between India and Slovakia. Concluding his visit to Slovakia, Mr. Modi, in a social media post, noted that the stronger trade relations between the two nations will greatly benefit the youth. He also expressed gratitude to the Slovakian government and people for the warmth and thanked his Slovakian counterpart, Robert Fico. Prime Minister Narendra Modi has said art and culture have power to bring people closer together. This comes after PM Modi and Slovak President Peter Pellegrini witnessed an exhibition centered on Varanasi, including works by Slovak artists at the Presidential Palace in Bratislava, Slovakia, yesterday. Calling it a Banaras Connect in Bratislava, PM Modi appreciated the creative interpretation of Varanasi by Slovak artists. The Ministry of External Affairs said the exhibition was dedicated to the theme Varanasi City and featured artworks that beautifully captured the spiritual, cultural and everyday life of one of India's oldest living cities. We now have our correspondent Ankit Kumar who is joining us from Avignon. He will bring us the latest updates on the G7 developments. Ankit? Many G7 economies are facing slower growth and demographic challenges. How would you say the partnership with India would help unlock new opportunities in manufacturing, innovation and services?
1: Yes, Valsa. You rightly pointed out about the shifting global dynamics. With aging populations and acute labor shortages. While partnering with India offers a direct and dynamic solution to them, India brings a massive, young, and highly skilled talent pool that is increasingly integrating into global tech and services sector.
0: Right.
1: But Valsa, the partnership goes far beyond just human capital. If you see newly adopted global tech and services, newly adopted India-France Innovation Roadmap 2030, the G7 bloc no longer views India merely as a vast consumer market. Instead, India has emerged as a critical, trusted partner for building resilient global supply chain and advancing manufacturing. Valsa.
0: Right, and as artificial intelligence becomes central to economic growth, how can India's DPI ecosystem serve as a foundation for responsible and inclusive AI development?
1: Absolutely, Valsa. See, The convergence of digital public infrastructure and artificial intelligence is truly the next frontier of inclusive development. You know, unlike closed proprietary platforms, India built its digital architecture like Aadhaar and UPI as a public good, designing it for population scale and inclusion right from day one. When you integrate AI into this framework, India's interoperable DPI provides the diverse, high-quality and consent-based data sets that require to train AI models that are responsible and unbiased. And if you see the latest India AI governance guidelines also, this approach balances innovation with a strong accountability. This ensures that AI actually empowers the last citizen, whether that means delivering personalized education or providing climate adversaries to the farmers in their local language. As the G7 prioritizes AI governance, actually India is actively sharing this human-centric blueprint with the world, proving that AI can be safe, scalable, public good. Yes,
0: Balsa. Right, Ankit, thank you for bringing us those details from the G7 summit from Evian. Prime Minister Narendra Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. We have more details from our correspondent.
2: Thursday morning, the Prime Minister is scheduled to hold meeting with leading chief executive officers, with discussions expected to continue till the afternoon. Later, he will participate in the Vivatik Summit, one of Europe's leading technology and innovation events, where he is expected to deliver an address. In the evening, Prime Minister will attend a community event and interact with members of the Indian diaspora. The program will also feature cultural performances, showcasing India's rich heritage and strengthening people-to-people ties between India and France. Mahesh Sobre, Akashwani News, Paris, France.
0: Moving on, Lok Sabha Speaker Om Birla has emphasized the importance of greater public participation in democracy. Interacting with participants of the Vikasit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Mr. Birla said, despite being the world's largest population with diverse cultures and varied geographical conditions, the country has emerged as the world's largest democracy after independence with increasing public participation. The Lok Sabha speaker said that India's democracy is not merely a system of governance, but a vibrant tradition of dialogue, consensus, participation and public involvement. He added that the Youth Parliament is a powerful platform for this democratic culture, which instills in the youth the values of leadership, a sense of duty, logical thinking and placing national interest above all. Prime Minister Narendra Modi today said the last decade has witnessed a record infrastructure upgrade across the country. Sharing a post of MyGov on his social media account, Mr. Modi said, the government is committed to building next-generation infrastructure for the people of the country to realize the vision of a Vikasit Bharat. The MyGov post highlighted the country's infrastructure transformation over the last 12 years. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has clarified that no proposal is currently under consideration by the Ministry on a proposed Middle East-India deepwater pipeline. In a statement, the Ministry said it noticed a series of media reports suggesting that the government is actively pursuing a deep-sea energy pipeline, sometimes referred to as the Middle East-India deepwater pipeline, connecting Gujarat to Oman and other Gulf countries. It added that there are no active discussions or negotiations with Oman or any other Gulf countries on this project at any level in the ministry. The government has debunked a message circulating on social media which claimed that the use of E20 fuel could lead to rejection of vehicle insurance claims. The fact-check unit of the Press Information Bureau has informed that the claim is fake. According to PIB, motor insurance policies remain valid with the use of E20 fuel. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Ahead of the re-examination of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, which is scheduled for the 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app, Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency, NTA, has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technology's directions for restricting Telegram access in India for a defined and limited period. In a statement, NTA said the restriction will cover the day of the NEET UG 2026 re-examination and its immediate aftermath. The agency added that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. The government has notified an amendment to the Drugs Rules 1945, saying that exemption given for sale of cough syrups in small villages has been withdrawn. Now, sale and dispensing of cough syrups in smaller villages will be required to take place only through duly licensed pharmacies.
3: The Ministry of Health and Family Welfare has issued a gazette notification saying that the word syrup from Schedule K of the drugs rules under the heading class of drugs has been omitted. Now, with the omission of the word syrup, the exemption will no longer be available for cough syrups. Earlier, the sale of cough syrups in villages with a population of less than 1,000 was permitted without requiring compliance with certain retail sale licensing provisions. The amendment was made to strengthen regulatory oversight of syrup formulations and to align the exemption framework with contemporary public health and safety requirements. The measure is expected to promote responsible distribution and sale of cough syrups while ensuring greater compliance with regulatory standards across the country. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
0: The Special Investigation Team, SIT, constituted for the allegations of misappropriation of donations and valuables at the Ram Temple in Ayodhya, began its probe today. SIT regarding irregularities in the handling of donations and valuables offered at the Ram Temple, authorities have not yet made any findings public, and the probe is at a preliminary stage. India has cautioned that efforts to reform the United Nations Security Council could fail if the expansion is limited to only non-permanent category of membership. India's permanent representative to the UN Ambassador Harish Parvathaneni made these remarks while addressing the Intergovernmental Negotiations meeting on Security Council reforms. Mr. Parvathaneni said UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the five permanent members.
4: Reflecting expansion of the category of two-year term non-permanent category as a convergence portrays only a part of the picture. Groups and member states add qualifiers and attach other interlinked parameters as they endorse expansion in the non-permanent category. UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms.
0: In women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match. India will next face Uruguay in their last Pool A match of the tournament on Thursday. In the FIFA World Cup 2026, there were four draws on a single day at the World Cup for the first time since 15th of June 1958, exactly 68 years ago. In the first fixture, debutant Cape Verde produced one of the biggest upsets, keeping world number two ranked Spain restricted to a goalless draw at Atlanta. In the second fixture, Belgium and Egypt drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. In the third fixture of the day, Uruguay played a 1-1 draw against Saudi Arabia in the opening clash at Miami. In the last fixture, Iran secured a hard-fought 2-2 draw against New Zealand in their opening match at SoFi Stadium in Los Angeles. And now before we end the bulletin, the headlines once again. From Minister Narendra Modi to Mr. Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till the 22nd of this month, ahead of NEET UG retest, message editing feature to remain disabled till June the 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storm into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
6: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
5: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
6: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं और अब
7: जब आप इसमें एआई को जोड़ देती हैं तो भारत का डीपीआई बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है, जो एआई मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
5: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
5: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को निर्धारित कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
8: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
5: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
9: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
5: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पूर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। 1740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 28वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।
11: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे. इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे. कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान.
2: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास. तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि. और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी.
3: संदेश के बाद आप सबका स्वागत है कार्यक्रम जय भारती में, और हमारे फौजी भाइयों का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में. फौजी शब्द भारतीय संस्कृति और समाज में असीम सम्मान, त्याग और भाईचारे का प्रतीक है. ये देश के वीर सैनिकों के प्रति हमारे प्रेम और कृतज्ञता को दर्शाता है, जो सरहद पर हर मौसम में डटकर हमारी रक्षा करते हैं. जी हाँ, तो इस कार्यक्रम के जरिए हम उनके लिए लेकर आते हैं कुछ फिल्मी नगमे. तो चलिए पहले सुनते हैं स्वदेश फिल्म का ये गीत उदित नारायण, कैलाश खेर और हरिहरन की आवाजों में. जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है और ए आर रहमान ने संगीत दिया है.

इस समय आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। जी हाँ, फौजी देश की सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, चाहे युद्ध की स्थिति हो या देश के अंदर कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, जैसे कि बाढ़, भूकंप। फौजी हमेशा नागरिकों की मदद और बचाव के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो चलिए, वो आगे रहते हैं, अब हम अपने फौजी भाइयों को सुनवाते हैं अगला गीत। ये फिल्म है लगान, आवाज हैं AR रहमान, श्रीनिवास और साथियों की। जावेद अख्तर के बोलों को संगीत से सजा है AR रहमान ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं रंग दे बसंती फिल्म का ये गीत। इसे गाया है दिलेर मेहंदी ने, प्रसून जोशी ने इस गीत के बोल लिखे हैं और ए आर रहमान ने संगीत दिया है।

0: इसी गीत के साथ ही फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जैविक उत्पादों और कृषि व्यापार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़कर विदेशों तक फल बेच रही हैं। सीएम ने कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों और निर्यातकों को सरकार के इस प्रगतिशील सोच में सहयोगी बनने का आमंत्रण दिया।
2: आज ये कृषि व्यापार मेला जिस तरीके से समय काल बीत रहा है, हमारे कृषक वर्तमान में जो कंपटीशन की व्यवस्था है और आज देश दुनिया में किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से नए तकनीक के साथ हम अपने किसानों को मजबूत कर पाए, इसका एक छोटा सा रूप आज इस मेले में उतारने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। तो आज कई ऐसे समावेशी के साथ हम काम कर सकते हैं जहां अपने किसान को अपने पैरों पर खड़ा होने में मजबूती प्रदान करेगा।
1: राज्य में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। रणनीति के तहत एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के एक बड़े होटल में शिफ्ट कर दिया है। मतदान के दिन तक सभी विधायक यहीं रहेंगे, जहां उन्हें वरीयता क्रम के अनुसार वोट डालने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने अपने पलामू दौरे के दूसरे दिन मेदिनीनगर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने भाषा विवाद और पेपर लीक मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। श्री दास ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विकसित भारत का संकल्प दोहराया।
3: सरकार में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ऐसे कार्य ये है जिन्हें स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर देवघर में नमो एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे 22 जून को इसका शुभारंभ करेंगे। आधुनिक उपकरणों से लैस यह एम्बुलेंस सेवा साल के 365 दिन 2400 घंटे पूरी तरह निःशुल्क रहेगी, जिससे स्थानीय मरीजों को त्वरित आपातकालीन चिकित्सा मिल सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के बड़का गांव में बादम कोल खनन परियोजना के बीजीआर कंपनी कार्यालय पर आज सुबह अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। सुबह करीब 5 हुई इस घटना में भीड़ ने परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। बड़का गांव थाना प्रभारी दीपक सिंह और एसडीपीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोषियों की पहचान कर जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग के दारू थाना प्रभारी ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक सराहनीय पहल की है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर वॉल पेंटिंग अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। दीवारों पर चित्रों के माध्यम से बाल विवाह रोकने, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा रहा है। थाना प्रभारी के अनुसार यह अभियान आम लोगों को जागरूक करने में बेहद प्रभावी साबित हो रहा है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर यात्रियों का पारंपरिक स्वागत हुआ और रक्तदान शिविर, छऊ नृत्य तथा वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। एयरपोर्ट निदेशक विनोद कुमार ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुखद अनुभव देने की प्रतिबद्धता जताई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप मुकाबले में 36 रन की पारी खेलते हुए टी20 विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हरमनप्रीत ने पूर्व कप्तान मिथाली राज के 726 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
0: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
0: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
0: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
2: जी,
0: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, आप
0: साहू समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिल चिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकतक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकतक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब, तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुम्दी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है, तो आपको बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुम्दी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुम्गी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं। हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
3: साथियों नमस्कार।
4: नमस्कार साथियों।
3: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
4: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
3: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
4: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियाँ रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहाँ के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
3: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
5: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
6: तो सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
5: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
3: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
4: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
7: सू
5: जी,
7: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
5: जी हाँ
7: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
5: जी डॉक्टर साहब।
7: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
5: मैं पूछती हूँ।
3: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
4: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
8: 15, 40
5: क्या?
3: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
8: 13, 12, 11 ओह
5: जॉन्सी,
8: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
4: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
8: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
5: क्या कम हो गए हैं?
8: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
3: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
5: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
8: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
5: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
8: Only 4
5: मेरी तरफ देखो,
8: सू, ओनली फोर। ओह, अब सिर्फ तीन बचे हैं।
5: क्या तीन बचे हैं? व्हाट थ्री डियर?
8: तीन पत्तियां।
5: पत्तियां?
8: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू,
5: हाँ हाँ,
8: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
5: क्या लगता है?
8: यही कि बस अब तीन पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
5: क्या जॉनसी?
8: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
5: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
8: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
5: हाँ
8: सू, अब सिर्फ तीन पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
5: जॉनसी,
3: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
4: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
3: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
4: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
9: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
3: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
4: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
8: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
3: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
9: जोंसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
3: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
4: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
8: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
3: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
4: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
8: सू मेरी दोस्त।
5: हाँ जॉन्सी।
8: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
3: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
5: सू। हाँ जॉन्सी।
8: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
5: हाँ बिल्कुल,
8: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
5: बिल्कुल जॉन्सी।
8: हाँ, हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
5: पत्ता?
8: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
5: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
8: देखो अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
5: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
8: हाँ, हाँ।
4: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
7: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
4: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
5: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
8: बेहतर।
5: ये लो कॉफी पियो।
8: थैंक यू
5: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
8: क्या हुआ?
5: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
8: कौन बेरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
5: हाँ।
8: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
5: हाँ वही।
8: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
5: हाँ वही, मिस्टर बेरमैन।
8: ओ गॉड,
5: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
8: क्या?
5: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
8: क्यों नहीं गिरा?
5: हाँ,
8: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
3: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
5: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
10: पेंटिंग?
5: हाँ।
10: कैसी पेंटिंग?
5: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
10: ओह, तो वो पेंटिंग है?
5: हाँ।
10: असली पत्ता नहीं है?
5: नहीं।
10: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
5: हाँ जानसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
10: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे

0: मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सो उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया,
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
0: मास्टरपीस,
1: हाँ
0: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे, और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रांची मेलोडीज़।

रांची मेलोडीज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आज की रांची मेलोडीज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत से गीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हेमंत मुखर्जी, हेमंत यानी हेमंत कुमार के गाए गीत। आज उनका जन्मदिन है, जी हाँ, क्योंकि 16 जून 1920 को उनका जन्म हुआ था। उनका नाम हेमंत मुखोपाध्याय था, जिन्हें हम पेशेवर रूप से हेमंत मुखर्जी या फिर हेमंत कुमार के नाम से जानते हैं। वे एक भारतीय संगीत निर्देशक और पार्श्व गायक थे, जिन्होंने मुख्य रूप से बंगाली हिंदी फिल्मों में गीत गाए और साथ ही साथ मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी, कोंकणी, संस्कृत और उर्दू सहित कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी गीत गाए। वे बंगाली और हिंदी फिल्म संगीत, रविंद्र संगीत और विभिन्न अन्य विधाओं के कलाकार थे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के लिए दो राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए और वे लोकप्रिय रूप से भगवान

1950 के दशक के मध्य तक हेमंत मुखर्जी ने एक प्रमुख गायक और संगीतकार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। बंगाल में वे रविंद्र संगीत के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक थे और शायद सबसे अधिक मांग वाले पुरुष गायक भी थे। मुंबई में पार्श्व गायन के साथ साथ हेमंत ने एक संगीतकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने नागिन नामक एक हिंदी फिल्म के लिए संगीत तैयार किया, जो अपने संगीत के कारण काफी सफल भी रही और नागिन के गाने लगातार 2 साल तक चार्ट टॉप पर बने रहे। और 1955 में हेमंत मुखर्जी को प्रतिष्ठित फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार भी मिला।

हेमंत कुमार बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। संगीत निर्देशक, संगीतकार, गायक और फिल्म निर्माता के तौर पर अपने हर काम से उन्होंने इतिहास रच दिया। वे हेमंत दा के नाम से भी मशहूर हुए। उन्होंने मुख्य तौर पर बांग्ला हिंदी फिल्मों के गानों के लिए धुनें तैयार की और इसके अलावा उन्होंने बांग्ला, हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में भी गीत गाए।

0: बांग्ला संगीत उद्योग पर हेमंत कुमार का राज हुआ करता था। बांग्ला फिल्मों के मुकाबले उन्होंने हिंदी फिल्मों में कम काम किया, इसके बावजूद हिंदी फिल्मों में भी उनका योगदान उतना ही अहम माना जाता है। चाहे बेमिसाल आवाज में गाए हुए बेकरार करके हमें यूं ना जाइए और जाने वो कैसे लोग जैसे क्लासिक गाने हो, या फिर ये नयन डरे डरे जैसे गानों की धुन हो, हेमंत दा ने हमेशा लोगों का दिल जीतने में वो कामयाब रहे।
1: बेकरार।

साल 1933 में हेमंत कुमार ने 13 साल की उम्र में अपना पहला गीत गाया। सुभाष मुखोपाध्याय की मदद से हेमंत कुमार को ऑल इंडिया रेडियो पर अपना पहला गीत अमर गनेते एले नरुगुपी चिरंतनी गाने का मौका मिला और आगे चलकर सुभाष मुखोपाध्याय एक मशहूर बांग्ला कवि भी बने। हेमंत कुमार ने बांग्ला संगीत का शैलेश दासगुप्ता से रविंद्र संगीत भी सीखा। इसके अलावा उन्होंने उस्ताद फयाज खां से भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली।

हेमंत कुमार की बेमिसाल आवाज उन्हें सबसे अलग बनाती थी। मशहूर संगीतकार सलील चौधरी हेमंत कुमार की आवाज को भगवान की आवाज कहते थे। साथ ही वे लता मंगेशकर के लिए कहते थे कि जब वे गाती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई महिला संत एक भक्ति गीत गा रही हो। ये एक ऐसा दौर था जब गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसी तरह के आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ऐसे में गायकों को इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता था कि उनकी आवाज माइक पर सही लगे, और ऐसा कहा जाता है कि हेमंत कुमार से ज्यादा इस बात की समझ किसी को नहीं थी कि माइक पर आवाज को कैसे कंट्रोल किया जाए। वे गाने के हिसाब से माइक से दूरी बनाने में माहिर थे।

इसी के साथ ही रांची मेलोडीज अब यहीं संपन्न होता है। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हेमंत कुमार के गीत, क्योंकि आज उनका जन्मदिन था तो रांची मेलोडीज उन्हीं के गीतों से

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। बोकारो के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने आज कोडरमा का दौरा किया। उन्होंने एसपी कुमार शिवासीस और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अपराध नियंत्रण के निर्देश दिए। आईजी ने जमीन विवादों के निपटारे के लिए थानों में नियमित थाना दिवस आयोजित करने को कहा। पाकुड़ में जिला परिषद सदस्य और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हंजला शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा क्रिमिनल अपील खारिज होने के बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया था। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के बनियाडी गांव में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 6 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पाकुड़ की नगर थाना पुलिस ने कलिकापुर मोहल्ला स्थित एक बंद बीड़ी कारखाने के पीछे छापेमारी कर नशीला पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस ने मौके से अवैध मादक पदार्थ के कारोबारी रमजान शेख को 29 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। चतरा की पत्थलगढ़ा थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिरकोल से मनीष मुंडा नामक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से करीब 13 लाख रुपए मूल्य की 2.5 किलोग्राम से अधिक अफीम और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची में मुक्केबाज शिक्षा कुमारी से मुलाकात की। गोड्डा की शिक्षा कुमारी ने राज्य सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत पात्र और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष खेल कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बता दें कि आज क्रीड़ा जगत में खेल जगत की कई बड़ी और चर्चित खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात होगी फीफा विश्व कप 2026 की, जहां दुनिया की दिग्गज टीमें और स्टार खिलाड़ी विश्व चैंपियन बनने की दौड़ में जुटी है। इसके बाद नजर डालेंगे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप पर, जहां भारतीय महिला टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। साथ ही चर्चा करेंगे झारखंड टी20 लीग 2026 की, जिसने राज्य के युवा क्रिकेटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है। पर्सनलिटी ऑफ द वीक में बात करेंगे न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज केन विलियमसन की, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। साथ ही जानेंगे भारत के दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा के योगदान के बारे में, जिन्होंने भारतीय शूटिंग को नई पहचान दिलाई। खेल खबरों में रांची की प्रतिभाशाली क्रिकेटर पलक कुमारी की उपलब्धि पर भी बात करेंगे, जिनका चयन भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2026 के विजेताओं और टूर्नामेंट की प्रमुख झलकियों पर भी नजर डालेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल आयोजन फीफा विश्व कप 2026 की, जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। फुटबॉल का महाकुंभ कहे जाने वाला फीफा विश्व कप पहली बार वर्ष 1930 में आयोजित हुआ था। पहले विश्व कप की मेजबानी उरुग्वे ने की थी और वही पहला चैंपियन भी बना था। तब से लेके आज तक यह प्रतियोगिता खेल जगत का सबसे बड़ा मंच बन चुकी है। इस बार का विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बार टूर्नामेंट की मेजबानी 3 देशों यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। प्रतियोगिता 11 जून से शुरू होकर 19 जुलाई 2026 तक चलेगी। इस विश्व कप की सबसे बड़ी खासियत है कि पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही है। पहले 32 टीमें खेलती थी, अब 12 समूह बनाए गए हैं। प्रत्येक में 4-4 टीमें हैं। हर टीम 3 ग्रुप मैच खेलेगी। समूह के शीर्ष 2 टीमों और सर्वश्रेष्ठ 8 तीसरे स्थान वाली टीमें नॉकआउट दौर में पहुंचेंगी। कुल 104 मैच खेले जाएंगे, जो विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक है। अब नजर डालते हैं शुरुआती मुकाबले पर। उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। दक्षिण कोरिया ने चेकिया को 2-1 से मात दी। अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हराया, जबकि ब्राजील और मोरक्को का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। स्कॉटलैंड ने हैती को 1-0 से पराजित किया। जर्मनी ने कुरासाओ को 7-1 से हराकर अपने इरादे साफ। इस विश्व कप में दुनिया की नजरें कई दिग्गज खिलाड़ियों पर टिकी है। पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, फ्रांस के किलियन एम्बापे, इंग्लैंड के जूड बेलिंगम, ब्राजील के विनिसियस जूनियर, इंग्लैंड के हैरी केन और जर्मनी के जमाल मुसियाला जैसे सितारे इस टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि विश्व कप जीतने वाली टीम को क्या मिलेगा। विजेता टीम को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, साथ ही करोड़ों डॉलर की पुरस्कार राशि और विश्व कप फुटबॉल में अमर पहचान मिलेगी। विश्व कप जीतना किसी भी खिलाड़ी और देश का सबसे बड़ा सपना माना जाता है। यदि विश्व कप के इतिहास पर नजर डालें तो सबसे सफल टीम ब्राजील रही है, जिसने रिकॉर्ड 5 बार खिताब जीता है। इसके अलावा जर्मनी और इटली ने 4-4 बार, जबकि अर्जेंटीना ने 3 बार विश्व कप जीता है। विश्व कप विजेता की सूची में उरुग्वे, इटली, जर्मनी, ब्राजील, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों का नाम दर्ज है। हालिया विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर खिताब जीता था। अब बात करते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण इसकी सरलता है। एक गेंद और खुला मैदान हो तो खेल शुरू हो जाता है। दुनिया के लगभग हर देश में फुटबॉल खेला और देखा जाता है। फीफा के सदस्य देशों की संख्या 200 से अधिक है। विश्व कप के दौरान अरबों दर्शक मैच देखते हैं। यही वजह है कि इसे द ब्यूटीफुल गेम भी कहा जाता है। भारत की बात करें तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम वर्तमान में विश्व फुटबॉल की शीर्ष टीमों में शामिल नहीं है। भारत अभी विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है, लेकिन हाल ही के वर्षों में भारतीय फुटबॉल में सुधार हुआ है और युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम इतिहास में 1950 का विश्व कप भी याद किया जाता है, जब भारत को खेलने का अवसर मिला था लेकिन टीम भाग नहीं ले सकी। तब से भारतीय फुटबॉल प्रेमी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तिरंगा भी विश्व कप के मैदान पर लहराएगा। और अब बात फाइनल मुकाबले की। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस महा मुकाबले पर होगी, जहां दो सर्वश्रेष्ठ टीमें विश्व चैंपियन बनने के लिए भिड़ेंगी। साथियों, फीफा विश्व कप 2026 सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि देशों, संस्कृतियों और करोड़ों सपनों का उत्सव है। और अब बात करेंगे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की, जहां भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में करते हुए पाकिस्तान को हराकर पूरे देश का उत्साह बढ़ा दिया है। महिला टी20 विश्व कप की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। पिछले डेढ़ दशक में इस टूर्नामेंट में महिला क्रिकेट को नई पहचान दी है। भारत अब तक यह खिताब नहीं जीत पाया है, लेकिन 2020 में फाइनल और कई बार सेमीफाइनल तक पहुंचकर अपनी क्षमता साबित कर चुका है। इस बार महिला टी20 विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है। प्रतियोगिता 12 जून 2026 से शुरू हुई है और इसका फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस बार कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण है। अब बात भारत के पहले मुकाबले की। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मैच में भारतीय टीम ने 64 रन से शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 पर ही सिमट गई। भारत की जीत की सबसे बड़ी नायिका रही दीप्ति शर्मा, जिन्होंने 5 विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह से झकझोर दिया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत की है। भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत उसका संतुलन है। बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, शिफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष जैसी खिलाड़ी हैं, जो किसी भी मैच का रुख बदल सकती हैं। वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और युवा खिलाड़ी का प्रदर्शन टीम को और मजबूत बनाता है। अगर भारत की उम्मीदों की बात करें तो क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह टीम इस बार खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है। टीम के पास अनुभव भी है और युवा जोश भी। कप्तान हरमनप्रीत कौर का नेतृत्व तथा स्मृति मंधाना की शानदार फॉर्म भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदों को और भी मजबूत कर रही है। महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता भी इस विश्व कप में साफ दिखाई दे रही है। भारत पाकिस्तान मुकाबले में बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी ने साबित कर दिया है कि महिला क्रिकेट अब

0: विश्व खेल जगत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो साथियों, भारतीय महिला टीम ने विश्व कप में जीत के साथ दमदार आगाज किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वुमेन इन ब्लू इस बार इतिहास रचते हुए पहली बार T20 विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर पाती है या नहीं। भारतीय टीम को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करेंगे झारखंड क्रिकेट के लिए एक नई और ऐतिहासिक शुरुआत की, झारखंड T20 लीग 2026 की। दोस्तों, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी JSCA द्वारा आयोजित इस फ्रेंचाइजी लीग की शुरुआत 10 जून 2026 से रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में हुई है। टूर्नामेंट का फाइनल 23 जून को खेला जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में कुल 27 मैच खेले जा रहे हैं, जिनमें लीग मुकाबले के अलावा 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल शामिल है। इस लीग का उद्घाटन मुकाबला छोटनागपुर रॉयल्स और रांची टाइटंस के बीच खेला गया। वहीं उद्घाटन समारोह की सबसे बड़ी आकर्षण रहे भारत के पूर्व कप्तान और झारखंड के गौरव महेंद्र सिंह धोनी। धोनी की मौजूदगी ने खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया। इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, छोटनागपुर रॉयल्स, रांची टाइटंस, कोयलांचल सुपर किंग्स, जमशेदपुर स्टीलर्स, धनबाद डायमंड्स और संथाल स्ट्राइकर्स। एक खास बात यह भी है कि JSCA स्टेडियम में मैच देखने के लिए दर्शकों की एंट्री बिल्कुल निशुल्क यानी फ्री रख दी गई है, जिसमें क्रिकेट प्रेमी बड़ी संख्या में मैदान पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। दोस्तों, ये लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि झारखंड के युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी हुनर को दिखाने का बड़ा मंच है। यहाँ अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर घरेलू क्रिकेट, IPL फ्रेंचाइजियों और चयनकर्ताओं की नजर पड़ सकती है। यानी यह प्रतियोगिता कई युवा क्रिकेटर्स के सपनों को नई उड़ान देने का काम कर सकती है। अगर झारखंड क्रिकेट की बात करें तो इस राज्य ने भारतीय क्रिकेट को कई बड़े सितारे दिए हैं। सबसे बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी का है। इसके अलावा ईशान किशन, वरुण एरोन, शहबाज नदीम, सौरभ तिवारी और अनुकूल रॉय जैसे खिलाड़ियों ने भी राष्ट्रीय और IPL स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज झारखंड T20 लीग उसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। कौन जानता है कि इस लीग में खेल रहा कोई युवा खिलाड़ी आने वाले समय में भारत की जर्सी पहनकर देश का नाम रोशन करे। कुल मिलाकर झारखंड T20 लीग 2026 राज्य के क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो युवा प्रतिभाओं को अवसर देने के साथ साथ झारखंड क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रही है। क्रीड़ा जगत कार्यक्रम में स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में अब बात करते हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज में गिने जाने वाले केन विलियमसन के बारे में। विलियमसन ने 16 साल के शानदार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है। केन विलियमसन ने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और देखते ही देखते न्यूजीलैंड क्रिकेट की पहचान बन गए। वे न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 19,000 से अधिक रन दर्ज हैं। कप्तान के रूप में उन्होंने न्यूजीलैंड को 2019 विश्व कप फाइनल तक पहुंचाया और 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भी दिलाया। अपनी शांत कप्तानी, खेल भावना और शानदार बल्लेबाजी के कारण वे दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक रहे। विराट कोहली, जो रूट और स्टीव स्मिथ के साथ उन्हें आधुनिक क्रिकेट के फैब फोर में गिना जाता है। उनके संन्यास के साथ क्रिकेट के एक सुनहरे दौर का महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया है। भारतीय खेल जगत के लिए हाल ही में एक बेहद दुखद समाचार सामने आया है। देश के महान निशानेबाज, एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता और दिग्गज कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से पूरा खेल जगत शोक में डूब गया है। जसपाल राणा सिर्फ एक सफल खिलाड़ी ही नहीं थे बल्कि भारतीय शूटिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अपने शानदार करियर में एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए अनेक पदक जीते। वे कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में भारत के सबसे सफल खिलाड़ियों में एक गिने जाते हैं, जहां उन्होंने 15 पदक अपने नाम किए थे। बहुत कम उम्र में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बाद में पद्मश्री और फिर कोच के रूप में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला। खिलाड़ी के रूप में उनकी उपलब्धियां जितनी शानदार थी, कोच के रूप में उनका योगदान उससे भी बड़ा माना जाता है। पेरिस ओलंपिक में भारत को गौरवान्वित करने वाले स्टार शूटर मनु भाकर की सफलता के पीछे भी जसपाल राणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कई युवा निशानेबाजों को तैयार किया और भारतीय शूटिंग की मजबूत नींव खड़ी की। रिपोर्ट्स के अनुसार म्यूनिक विश्व कप से लौटते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर के खिलाड़ियों, कोचों और खेल प्रेमियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। आज भारतीय खेल जगत ने केवल एक महान शूटर नहीं बल्कि एक ऐसे गुरु को खो दिया है जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए चैंपियन तैयार करने में लगा दी। उनकी उपलब्धियां, उनका समर्पण और खेल के प्रति उनका जुनून आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भारतीय खेल जगत के इस महान सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सादर नमन करते हैं। क्रीड़ा जगत में अब खास खास खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड और खास करके रांची के लिए बेहद गर्व की खबर है। युवा क्रिकेटर कुमारी पलक का चयन भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ होने वाले अंडर 19 T20 वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। खास बात यह है कि पलक का चयन दोनों प्रारूप की टीमों में हुआ है, जो उनकी प्रतिभा और निरंतर प्रदर्शन को दर्शाता है। देवघर जिला से ताल्लुक रखने वाली और रांची जिला क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली पलक ने इस उपलब्धि के साथ इतिहास रच दिया है। वह रांची जिला क्रिकेट संघ RDCA से भारतीय टीम में चयनित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे झारखंड क्रिकेट के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। पलक पिछले कुछ वर्षों से झारखंड की आयु वर्ग और महिला क्रिकेट प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही। उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का ही परिणाम है कि आज उन्हें भारतीय टीम की नीली जर्सी पहनने का अवसर मिला है। टेनिस जगत का दूसरा ग्रैंड स्लैम और क्ले कोर्ट का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026, जिसे रोला गैरो भी कहा जाता है, हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न हुआ। दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ियों की मौजूदगी में खेले गए इस टूर्नामेंट ने कई नए सितारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। पुरुष एकल वर्ग में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इटली के फ्लाविओ कोवोली को 5 सेटों के रोमांचक फाइनल में हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। लंबे समय से ग्रैंड स्लैम जीतने का इंतजार कर रहे ज़ेवरेव के लिए यह जीत बेहद खास रही। वहीं महिला एकल वर्ग में रूस की 19 वर्षीय युवा खिलाड़ी मिर्रा एड्रीवा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने फाइनल में पोलैंड की माजा ख्वालिस्का को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही एड्रीवा 1992 के बाद रोला गैरो जीतने वाली सबसे युवा महिला चैंपियन बन गई। फ्रेंच ओपन की पहचान उसकी लाल मिट्टी यानी क्ले कोर्ट से होती है, जहां खिलाड़ियों की फिटनेस, धैर्य और मानसिक मजबूती की कड़ी परीक्षा होती है। इस बार का टूर्नामेंट कई उलटफेरों और नए चेहरों के शानदार प्रदर्शन के लिए याद रखा जाएगा। हाल ही में चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने पहली पारी में 564 रन बनाए, जबकि अफगानिस्तान की टीम दोनों पारियों में क्रमशः 152 और 112 रन ही बना सकी। पदार्पण कर रहे युवा स्पिनर मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच में यादगार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द मैच बने। तो दोस्तों इसी के साथ क्रीड़ा जगत में आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रभु शरण। अब मुझे यानी विश्वजीत पात्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत।

ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर।

अभी आप सुन रहे थे खेल जगत के बारे में। खेल जगत शारीरिक और मानसिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यह मनोरंजन और प्रतिस्पर्धा का मिश्रण है जो लोगों को एकजुट करने के साथ साथ अनुशासन और टीम की भावना को सिखाता है। सचमुच दुनिया भर में 8000 से अधिक के स्वदेशी और अधिकाधिक खेल खेले जाते हैं और इसमें मुख्य रूप से आउटडोर खेल, इंडोर खेल, बैडमिंटन, स्वदेशी खेल, बहुत सारे खेलों को खेला जाता है। आइए अब हम बात करते हैं खेलों के महत्व के बारे में। खेल का दायरा सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी खेलों का बहुत महत्व है। यह शरीर को मजबूत बनाता है और एकाग्रता, अनुशासन सिखाता है। यह सामाजिक और आर्थिक लाभ को भी बढ़ावा देता है। हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन जैसे ओलंपिक या राष्ट्रीय मंडल खेल मेजबान देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को एक बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। अगर हम बात करते हैं खेलों के द्वारा, तो इनके महत्व में योग्यता और रोजगार भी सम्मिलित है। आज के समय में खेल का एक बड़ा कैरियर विकल्प बन चुका है जिसमें खिलाड़ी अपने दम पर पहचान और सरकारी नौकरियों तक हासिल कर लेते हैं।

सचमुच खेल जगत एक बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देशों को भी जोड़ने का माध्यम है।

श्रोताओं, स्वागत है आपका इस रेडियो कार्यक्रम में। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां दे दें। 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। युवाओं के लिए कार्यक्रम युवानी आप सुनेंगे 5:02 पर। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोग। 6 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का।

6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर आप सुन सकेंगे जिले में आजकल। आदिवासी अखड़ा का कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:15 पर।

7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अंग्रेजी टॉक, विषय रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट की टू नेशन। 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 8:10 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम, विषय रहेगा वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे मनी टॉक और 9:45 पर मंथन।

10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंजे झारखंड, जिसमें आप सुनेंगे शिक्षा पर आधारित लोक गीत। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। 11 बजे से आप सुनेंगे हिंदी और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये

श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम में आइए सुनते हैं पहला गीत फिल्म तुमसे अच्छा कौन है। गीत समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण के और आवाज कुमार शानू के।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सान सरगम का अगला गीत, फिल्म अंजाम से। गीत समीर के हैं, आनंद मिलंद के संगीत है और आवाज अभिजीत के।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
2: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
3: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम सांझ सरगम में। आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं। गीत जावेद अख्तर के हैं, संगीत राजेश रोशन के और आवाज उदित नारायण के।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान में 3 दिवसीय झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले के लोगों का लोकार्पण किया और टाना भगत परिवारों को पशु शेड निर्माण के लिए 100% अनुदान राशि सौंपी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने रांची स्थित लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि नामको मिलिट्री हॉस्पिटल में 19 जून तक विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वर्ष 2003 की SIR मतदाता सूची से मैपिंग पूरी होने के बाद राज्य के 1,63,00,000 मौजूदा मतदाताओं को वर्तमान प्रक्रिया में कोई दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे। इन मतदाताओं को केवल प्री पिल्ड गणना फॉर्म और रंगीन फोटो देना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने गुमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के क्रियाकलापों की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आज जिला स्तरीय नारकोटिक समन्वय समिति की बैठक की। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए पांकी, मनातू और छतरपुर सहित कई थाना प्रभारियों को मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। रांची कल से 2 बड़े खेल आयोजनों के लिए तैयार है। खेलगांव में कल से द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो रहा है। इसके साथ ही कल से ही खेलगांव में 5 दिवसीय 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप भी शुरू हो रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज की सभा में आपके साथ मैं हूं राधा। नमस्कार। सभा में सबसे पहले सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी हम लेते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम के 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता में। आज एक ही संगीतकार रविंद्र जैन की संगीत पर चंद फिल्मी नगमे। शाम 5:30 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम में धान की उन्नत किस्म एवं खेती पर चर्चा होगी। साथ ही एक भेंटवार्ता आप सुनेंगे जैविक खेती में प्रोत्साहन। भेंटवार्ताकार होंगे श्री पंचानंद साहू, सहायक कृषि पदाधिकारी हैं और इनसे बातें करेंगे सुनीता हांसदा। साथ ही आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में चंद लोकगीत। इस कार्यक्रम के साथ होंगे डोगरो ब्रोली और सुनीता हांसदा। शाम 6 बजे सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से मुख्य समाचार। शाम 6:02 पर आप सुनेंगे बांग्ला कार्यक्रम 7 रंग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर आज चर्चा आप सुनेंगे। साथ ही मिशन वात्सल्य योजना पर जानकारी देंगी। इस कार्यक्रम के साथ होंगी रुद्रानी घोष और मुनमुन दत्ता। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संथाली। शाम 6:55 पर हम चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। शाम 7:10 पर विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पर कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे संध्या के 7:45 पर। रात्रि 8 बजे सुनेंगे फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि के 8:45 पर। रात्रि 9:15 पर हम आपको पुनः शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। गजलों का कार्यक्रम महफिल हम प्रसारित करेंगे रात्रि के 10:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम शुरू के रंग के साथ हम होंगे आपके साथ रात्रि के 10:30 पर। रात्रि 11:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पे। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही संगीतकार रविंद्र जैन को। पहला गीत चितचोर से हमने लिया है, आवाजें हैं हेमलता और यशोदास की। गीत लिखा है रविंद्र जैन ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: गीत गाता चल, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे थे गीत गाथा चल का ये सुंदर सा गीत आरती मुखर्जी जसपाल सिंह की आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं एक ही संगीतकार रविंद्र जैन को। अगला गीत सुनने से पहले ये आवश्यक सूचना, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के प्रभावित गृह रक्षकों को सूचित किया जाता है कि पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला अंतर्गत मुहर्रम पर्व ड्यूटी 2026 के अवसर पर दिनांक 25 जून 2026 से 28 जून 2026 तक कुल 4 दिनों के लिए विधि व्यवस्था संधारण हेतु 300 गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। अतः वैसे सभी गृह रक्षक जो वर्तमान अवधि में किसी भी प्रकार की कर्तव्य में प्रतिनियुक्त नहीं है, वे सभी गृह रक्षक जिला समादेष्टा कार्यालय चाईबासा में आकर दिनांक 18 जून 2026 से मुहर्रम पर्व हेतु आगमन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसे अति आवश्यक समझे। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आगे बढ़ते हैं। और आज जैसा कि आप सुन रहे हैं एक ही संगीतकार रविंद्र जैन को, अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में, फिल्म का नाम है सौदागर।

मान अभिमान इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे यशोदास की आवाज़ में। आज आप सुन रहे थे एक ही गीत संगीतकार रविंद्र जैन को। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं पे संपन्न होता है। अब राधा को दीजिए इजाज़त, अगले कार्यक्रमों में पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान बानी। इस कार्यक्रम के साथ होंगे डुगरू गुरुली और सुनीता हांसदा।

0: जो सूखा जगह होता है वहाँ की खेती के लिए ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि मध्यम भूमि पर, जो मीडियम लेवल का जो हमारा मिट्टी होता है, अगर वहाँ पे अगर करते हैं तो बिरसा धान 203, यह मध्यम अवधि की बेहतरीन किस्म है जो कि 115 से 125 दिन के अंदर में तैयार हो जाती है। दूसरा है बिरसा विकास सुगंधा 1, जिसको सुगंधित चावल चाहने वाले किसानों के लिए बहुत लोकप्रिय किस्म है, जो कि 125 दिन की अवधि में ये तैयार हो जाती है। और तीसरा है पूसा बासमती 1460, अच्छी पैदावार और व्यापारिक मुनाफे वाली ये बासमती किस्म होती है। और निचली भूमि के लिए अगर हम बात करें, जो हम लोग दोन बोलते हैं, मतलब लो लैंड जिसको हम लोग निचली भूमि कहते हैं, तो उसके लिए नवीन नवीन का जो किस्म है, नवीन धान किस्म, ये 120 से 125 दिन में तैयार होती है और ये निचली जमीनों के लिए बहुत अच्छी उपज देती है। और अगला है स्वर्ण और महामाया, ये निचली जल भराव वाली जमीन के लिए बहुत ही अत्यधिक उपज देने वाली किस्में होती है। जैसे कि नीचे की अगर खेत है जहाँ पे पानी का जमाव ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे जगह के लिए ये स्वर्ण और महामाया धान की किस्में बहुत अच्छी उपज देती है।
1: এসব সারি কাজে চাষ আগে কো না কিসিম কিসিম রিয়া উন্নত কিসিম রিয়া নতুন কো সুনিতা মাইতি কিং কিং কাজে মার্শাল বুকিং জায়গার কো বাইম কেডা নেলেকান হিতে কো রিয়া চাষ বাস তো ওতেলো তে হাসালো তে সালা চাপিয়ে কেন লেখা জুড়িয়ে কেন লেখান চাষ বাস কো তান আবু ওকোনা পারম্পারিক রূপ তো চাষ হয় তান চাষ কো গে চাষ এর গিয়া কো আবু চাষ তান গিয়া ᱱᱟᱱᱫᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱤᱱᱟᱨᱮ ᱥᱟᱨ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱚᱫᱤ ᱚᱠᱚᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱥᱟᱨ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱚᱫᱤ ᱚᱠᱚᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱦᱚᱨᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵᱩ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱩᱲᱩᱨᱵ
0: नियंत्रण हेतु 300 गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। अतः वैसे सभी गृह रक्षक जो वर्तमान अवधि में किसी भी प्रकार की कर्तव्य में प्रतिनियुक्त नहीं है, वे सभी गृह रक्षक जिला समादेष्टक कार्यालय चाईबासा में आकर दिनांक 18/6/2026 से मुहर्रम पर्व हेतु आगमन कराना सूचित करें। इसे अति आवश्यक समझे। सूचना समाप्त।
1: जैसे अगर कोनेन खुलिया ची सूचना तयम इला संदेश को भू आयुम लिया।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
3: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चलते बढ़िया।
2: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख

0: करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
1: हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
0: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा MSP दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए MSP दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और से संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
2: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
3: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
4: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
5: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

0: ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱮᱞᱟ ᱵᱩᱢᱤᱭᱟᱜ ᱵᱮᱯᱮᱴᱟ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮᱭᱟ ᱪᱟᱥᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱯᱮᱴᱟ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱭᱵᱤᱠ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱢᱮ ᱯᱨᱚᱛᱥᱟᱦᱚᱱ ᱱᱮᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱥᱨᱤ ᱯᱟᱧᱪᱟᱱᱚᱱ ᱥᱟᱣ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱭᱟ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱯᱚᱫᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱥᱚᱧᱡᱚᱜ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱞᱚ ᱵᱮᱯᱮᱴᱟ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱥᱩᱱᱤᱛᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱢᱟᱨᱵ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮᱭᱟ
1: कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाइयों एवं बहनों को सुनीता का जोहार। किसान भाइयों एवं बहनों, फिर से आप सबके लिए नई जानकारी के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। आज हम पहुँचे हैं संयुक्त कृषि विभाग और यहाँ हम आप सबके लिए कुछ विशेष जानकारियाँ लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत हम किस तरह से हमारे किसान भाइयों के लिए खेत को बचाने के प्रयास या फिर उनकी जानकारियों को हम उन्हें दे सकते हैं। और इस विषय पर हमें इसकी जानकारी दे रहे हैं श्री पंचानन साहू जी, जो कृषि विभाग के सहायक कृषि पदाधिकारी है वनस्पति के तौर पर। तो आइए उनका हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में और जानते हैं इस विषय से संबंधित जानकारियों को। तो श्री पंचानन साहू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम।
1: साहू जी, हम जानना चाहेंगे कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत हम हमारे किसान भाइयों को किस तरह से खेत बचाओ अभियान के बारे में बता सकते हैं या फिर वो किस तरह से अपने खेतों को बचा सकते हैं।
2: खेत बचाओ अभियान माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास भारत सरकार द्वारा 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक मनाने का आह्वान किया गया है।
1: बिल्कुल।
2: इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की सेहत को सुधारना, रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम करना और पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना है।
1: जी।
2: इसके तहत किसानों को प्रखंड स्तर, जिला स्तर पर किसान गोष्ठी का आयोजन करके किसानों को जागरूक करना है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं और इसके लिए ज़रूरी है कि रासायनिक उर्वरक का उपयोग हम कम से कम करें और आपका हरी खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट इत्यादि का प्रयोग अधिक से अधिक किसानों को करने के लिए जागरूक पैदा किया जा रहा है।
1: जी, आपका कहने का मतलब है कि हमारे किसान भाई बहन जितनी ज़्यादा जैविक खेती करेंगे उतना अच्छा है। तो साहू जी, थोड़ा सा हमें हमारे किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि जैविक खेती क्या है। सबसे पहले हम किस तरह से उसकी शुरुआत करेंगे।
2: जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की सेहत का सुधारना।
1: जी।
2: इसका खेती करके इस जैविक के उर्वरक का प्रयोग करके, जैविक के खाद का प्रयोग करके, जैसा कि माने केंचुआ खाद है।
1: जी।
2: इसका उपयोग करके हम फसल का पैदावार को बढ़ा सकते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। किसान भाइयों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन करने के लिए हम क्या बता सकते हैं।
2: किसानों को जैविक खेती का प्रोत्साहन करने के लिए किसान गोष्ठी के आयोजन करके जागरूकता माने पैदा करना हमारा परम कर्तव्य होगा।
1: जी।
2: और दूसरी बात है कि रासायनिक खाद का उपयोग कम करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना होगा और जैविक खाद का प्रयोग अधिक से अधिक किसान करे, इसके लिए किसानों को लिफलेट, पंपलेट आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए, उनके बीच इस संसाधन को अधिक से अधिक माने वितरण करना हो।
1: सर, हम जानना चाहेंगे कि जैविक खेती का प्रोत्साहन आखिर क्यों किया जा रहा है, मतलब क्यों इस समय में, इस आधुनिक युग में अगर देखा जाए तो रासायनिक खाद से जो है फसल के उत्पादन बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम जैविक खेती का जो है प्रोत्साहन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है।
2: देखिए, इसका मुख्य कारण यह, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का मुख्य कारण है कि कि मिट्टी की स्वास्थ्य को सुधारना है।
3: बिल्कुल।
2: दूसरी बात यह है कि इससे किसान का जो पैदावार होता है उसमें गुणवत्ता माने बना रहता है जैविक खेती से माने फसल का उत्पादन करने से
3: जी।
2: और दूसरी बात यह है कि इस माने इसमें उत्पादन लागत भी कम होता है
3: जी।
2: उत्पादन लागत अगर कम होगा तो स्वाभाविक है कि किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
3: बिल्कुल।
2: और फसल का गुणवत्ता भी बरकरार रहता है
3: जी।
2: और हमारा जैविक खेती को बढ़ावा देने का और एक मुख्य उद्देश्य है कि मानव का स्वास्थ्य जो है बना रहता है।
3: बिल्कुल, मतलब कि हमारा जो है मिट्टी से हम भी संबंधित रखते हैं।
2: हाँ।
3: हमारा भी स्वास्थ्य जो है उससे जुड़ा
2: जुड़ा हुआ है।
3: बिल्कुल,
2: मनुष्य का स्वास्थ्य भी मिट्टी से जुड़ा हुआ है।
3: बिल्कुल।
2: जैसे किसान जो पैदावार कर जो भी उपज मने उपजाते हैं तो उसका मने दैनिक जीवन में हम जीने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं
3: जी।
2: तो अगर रोग मुक्त उपज होगा तो स्वाभाविक है कि जो भी जीव उसका उसका सेवन करेंगे तो वह भी निरोग रहेंगे।
3: बिल्कुल। और सर यहाँ पे अब जो हमारा जैविक खेती का प्रोत्साहन हम लोगों को करवाते हैं, ये हमारे सरकार की तरफ से भी इसकी जो है प्रोत्साहन की जा रही है, सरकार की तरफ से इसके लिए क्या योजना है इस खेती पर?
2: सरकार की तरफ से इसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार योजना से भारत सरकार जो है किसानों को लाभान्वित कर रही है
3: जी।
2: इसमें हर चार माह में किसानों को माने दो दो हज़ार रुपये करके कुल तीन किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता कर रही है
3: जी।
2: ताकि किसान रासायनिक खाद का उपयोग कम करें और जैविक खाद का उपयोग करके वह फसल की गुणवत्ता को बनाए रखे और मानव के स्वास्थ्य पर भी उसका माने अच्छा असर पड़े।
3: बिल्कुल, जैसे हम सभी देखते हैं कि अभी के अगर आधुनिक युग के तुलना अगर हम करें पारंपरिक खेती से तो अभी की जो खेती होती है बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर पारंपरिक खेती में अगर हम खेती करते हैं तो थोड़ी सी हमारी जो है फसलों के उत्पादन में थोड़ा समय लगता है या फिर फसल की उपज कम हो जाती है। तो हमें हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे किसान भाइयों को जैविक खेती के तरफ जो है ज़्यादा झुकाव देना चाहिए। तो थोड़ा सा सर इसमें तुलना करके हम हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होगा।
2: रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके जो किसान अन्न का पैदावार करते हैं
3: जी।
2: उसका गुणवत्ता सही नहीं रहता है। अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने से फसल की गुणवत्ता जो है नष्ट होता है और जैविक खेती का प्रयोग करके जो रासायनिक उर्वरक से खेती करने से किसान का कृषि लागत ज़्यादा होता है और उसके ठीक विपरीत जैविक खाद का उपयोग करके किसान जो खेती करते हैं उसमें कृषि लागत कम होता है, जिसके कारण से किसानों की आय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए भारत सरकार की मंशा है कि

0: किसानों को जागरूक करके उनके माध्यम से अधिक जैविक खाद का प्रयोग करके कृषि को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल। तो सर अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे या फिर किस तरह से उन्हें खेती करना चाहिए, इस विषय पर आप थोड़ा सा उन्हें संदेश दे दीजिए।
0: मैं किसानों को इस संदर्भ में यह सलाह देना चाहता हूँ कि रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम से कम करें और जैविक खाद का प्रयोग अधिक से अधिक करें, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और उपज हमारा अधिक से अधिक हो और उपज की गुणवत्ता भी बरकरार रहे।
1: और जिसका सेवन करते हैं हम, तो हमारे मानव शरीर का भी स्वस्थता बना रहे।
0: जैविक खेती करके हम गुणवत्ता पूर्ण उपज का इस्तेमाल जब मानव करते हैं तो इसी स्थिति में उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि लोग हमारे भूलते जा रहे हैं जैविक खेती के तरीकों को और अपनी स्वस्थता को भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपके इन संदेशों से हमारे किसान भाई बहन इस बात पर ध्यान रखेंगे कि आगे चलकर अपनी कृषि में वो जैविक खेती का ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे या उसको बढ़ावा देंगे। सर आपने हमारे कार्यक्रम में अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फसल बीमा करे।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: ᱪᱟᱥᱮ ᱜᱟᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱠᱚᱞᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱪᱟ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱱᱤᱱᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱜᱟᱠᱚ ᱚᱸᱰᱚᱢ ᱥᱮ ᱛᱩᱱᱰᱩ ᱥᱩᱢᱟᱹᱭ ᱪᱮ ᱦᱟᱸᱰᱚᱨ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱣᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱰᱚᱵᱨᱩ ᱵᱩᱲᱤ ᱵᱚᱞᱤ ᱚᱸᱰᱚᱜᱼᱚ
5: ᱥᱩᱱᱤᱛᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱠᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी की चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित अंगदान और उत्तक दान कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने अंगदान को मानवता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक बताते हुए इसके प्रति व्यापक जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिकी कंपनियों ने झारखंड में रणनीतिक महत्व के दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन में गहरी रुचि दिखाई है। इस सिलसिले में आज रांची में मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अमेरिकी काउंसलेट जनरल कैली जाइल डियाज के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। गढ़वा जिले में हड़ताल पर गए सभी मनरेगा कर्मियों को उप विकास आयुक्त प्रेमलता मुर्मू ने 24 घंटे के भीतर कार्यस्थल पर लौटने का निर्देश दिया है। डीडीसी ने बताया कि मार्च से जारी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण ग्रामीण रोजगार सृजन का लक्ष्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र स्थित गैलेक्सी इनगोट प्लांट में आज दोपहर फार्नेस भट्टी में विस्फोट होने से दो कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस के अनुसार बॉयलर में लीकेज के कारण अचानक यह धमाका हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खूंटी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 स्थित उर्दू स्कूल में आज एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टूटी और उपाध्यक्ष शशांक शेखर ने किया। आज के शिविर में कुल 11 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। राज्य में मानसून का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने अगले दो दिनों तक इसके कुछ कमजोर रहने के आसार जताए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि प्रशांत महासागर में अलनीनो की सक्रियता से खेती किसानी प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से एफएम के 101.7 MHz पे। और अब आइए सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम सात रंग।

0: ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱱᱩᱨᱟᱢ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ
1: सनी राहें ना अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: तीनाले बड़ा परिवार जतो बनमा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले नगे नेहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तब में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बड़गड़ा आणकी थाना जंगल गया है तो आउका कहाँ मना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तब घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए
6: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनिता तमसोय भरूपा सेनाकना एसो दुकुर मिनाया यापा मेरे तपा मेरे वा बेटा निका
7: अन्या तुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितमई कोड़ा मुनि में मुड़ी ने बागिया तो किन दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तने मुरुगम गोयां तो जाय तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लेंगे जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरा का अले आया नु तुम तेना मिल आप ही लेते ना
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण निशुल्क चिकित्सा बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क कन्यादान हेतु अनुदान उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क करें।
0: बिसे दोन सहा

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आबो जिले रे अडिगान उनकान गिद्र मेना कोआ ओकोय रिन आयो बाबा बनू कोआ आर आयो बाबा मेना कोआ मेनखान उनको किसी कारणवश आकोरिन गिद्र बाको नेल दाड़े आको कना। नोकान गिद्र जहाँ गोद इदी प्रक्रिया रे शामिल बाबो दाड़े आकोआ उनको दो वर्तमान रे संस्थागत देखरेख को ताहेना। नोकान गिद्र को नेल लगित सरकार सेन खन मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना को चलावया। नुआ दो पालन पोषण देखरेख योजना हबन मेता। नुआ योजना उनकान गिद्र लगी मना जहाँ किछु समय लगी परिवार रेया नेल रेया दरकार मेना। अगर आबो नोकान जहाँ गिद्र जीवन रे रस्क बन अगू सना बुआ एनखान पालक माता पिता बनाव कत जोगदान बन एम दड़ेया। नोआ लगी दो भाभी आयो बाबा उमर रे जोड़ दो 115 बरस खन डेर बांग हुई दरकारा। आर जुदी एकला होल जहाँ गिद्र असुल सनाय कना एनखान उनिया उमर दो कम से कम 35 बरस आर बांखान बानारा उमर मेसा कत 115 बरस खन डेर बांग हुई दरकारा। आर डंगवे कोड़ा दो कुड़ी गिद्र दो बाको एमा कोआ। अगर आबो पश्चिम सिंहभूम जिला रे निवासी कना बन आबन ठे मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र पुलिस स्टेशन खन न्याम अकान या बांखान परगया केंद्र खन न्याम अकान पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट दरकारा। पालक माता पिता हड़मो आर मन ते बेस ताहे दरकारा। नोआ योजना इदी कातेर इच्छुक परिवार दो सरकार सेन खन महीने 4000 टका को एमा को करना। डेहर जानकारी लगी जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 9090707004 89 रेबन संपर्क मा और बांखान जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय 3रा तला चाय बसा रे हेज कते जानकारी बन हताव दाड़े मा।

0: से सीखें सवाल पूछें। डे 3 स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट। झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित
2: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
3: भाइयों एवं बहनों जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार।
2: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
3: भाइयों एवं बहनों जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार।
2: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में किया झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन। जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और कृषि निर्यात में वैश्विक पहचान बनाने का दिया संदेश। राज्य में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव का काउंटडाउन शुरू। मिशन 28 के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने 23 की चुनावी रणनीति। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी। राज्य के 1,63,00,000 मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने से मिली छूट। राज्य के क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक में अमेरिकी कंपनियों ने दिखाई निवेश की रुचि। प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक। और रांची में कल से थ्रो बॉल और स्केटिंग का महाकुंभ। दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप और 12वीं नेशनल रैंकिंग के लिए रांची में जुटेंगे 5 देशों के खिलाड़ी और देश भर से 1,000 स्केटर्स। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान में 3 दिवसीय झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मेले के लोगो का लोकार्पण किया और टाना भगत परिवारों को पशु शेड निर्माण के लिए 100% अनुदान राशि सौंपी। मुख्यमंत्री ने जैविक खेती तथा आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया।
1: हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में ही बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ किया, जहां किसान अपने खेतों में बंजर भूमि में फलदार वृक्ष लगाने का, और आज उसका फल मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर सिमडेगा की वो महिलाएं जो बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़ी हुई हैं, आज वो अपना आम इंग्लैंड में भेजने का काम कर रही है। आप सभी किसान भाइयों से एक ही चीज निवेदन करूंगा कि आपने इन फसलों में कोई जहरीला पदार्थ का उपयोग ना करें, वो शारीरिक रूप से काफी नुकसानदेह होता है।
0: राज्य में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। रणनीति के तहत एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के 1 5-सितारा होटल में शिफ्ट कर दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि सभी विधायक एकजुट हैं।
2: पार्टी के विधायक पार्टी लाइन से हटके कभी कुछ नहीं सोचता है। पार्टी ने जो लाइन प्रत्याशी को समर्थन देने का परिमल नाथवानी जी को, सभी पूरी तरीके से एकजुट होकर के उस निर्णय के साथ खड़े हैं। अभी तो आना होगा, फिर आगे देखा जाएगा।
0: इधर इंडिया गठबंधन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज और कल रांची में मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन के सभी विधायकों और प्रमुख नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बीच राज्य के मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया है कि इस चुनाव में गठबंधन की जीत निश्चित है।
3: प्रणव झा जी, हम लोग जीतेंगे, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, ये बंगाल नहीं है, झारखंड है, और यहाँ इस बार लोग अस्मिता के साथ, झारखंड की मान मर्यादा के साथ वोट करने जा रहे हैं।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने रांची स्थित लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि नामकुम मिलिट्री हॉस्पिटल में 19 जून तक विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और आम नागरिकों को निःशुल्क नेत्र जाँच की सुविधा मिल रही है। राज्यपाल ने इस लोक कल्याणकारी पहल की सराहना की। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वर्ष 2003 की एसआईआर सूची से मैपिंग पूरी होने के बाद राज्य के 1,63,00,000 मौजूदा मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे। इन मतदाताओं को केवल प्री फिल्ड गणना फॉर्म और रंगीन फोटो जमा करना होगा। प्रवासियों के लिए बुक ए कॉल की सुविधा दी गई है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। तकनीक से समाचार

0: विराम के बाद।
1: खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
2: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
4: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
3: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने गुमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के क्रियाकलापों की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।
7: 1 रुपया यदि भेजते हैं तो लाभ के 15 पैसा पहुँचते थे, 85 पैसा बिचौलिया। वही चीज को एक बड़ा पारदर्शिता ये भारत में लाया प्रधानमंत्री, ताकि कोई बिचौलिया किसी ऐसा तत्व का कोई हाथ ना लगे, 100% लाभुक के बीच में पहुँचे।
0: अमेरिकी कंपनियों ने झारखंड में दुर्लभ और रणनीतिक खनिजों के खनन में गहरी रुचि दिखाई है। इस संबंध में आज रांची में मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अमेरिकी काउंसलेट जनरल के प्रतिनिधिमंडल के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कंपनियों को लिथियम और टाइटेनियम जैसे खनिजों के अन्वेषण में निवेश के लिए आमंत्रित किया। राज्य में मानसून का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिनों तक इसके कुछ कमजोर रहने के आसार जताए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि प्रशांत महासागर में अलनीनो की सक्रियता से खेती किसानी प्रभावित हो सकती है। हालांकि मानसून धनबाद, बोकारो और कोल्हान प्रमंडल को पूरी तरह कवर कर चुका है। विभाग ने कल रांची और रामगढ़ सहित अधिकांश जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची कल से दो बड़े खेल आयोजनों के साथ खेल मानचित्र पर चमकने के लिए तैयार है। खेल गांव में कल से द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो रहा है, जिसमें भारत, नेपाल और श्रीलंका सहित पांच देशों के 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड की अरुणा यादव भारतीय महिला टीम की कमान संभाल रही हैं। इसके साथ ही कल से ही खेल गांव में पांच दिवसीय 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप भी शुरू हो रही है। इसमें देश भर के 1000 से अधिक स्केटर्स अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में किया झारखंड कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन। जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और कृषि निर्यात में वैश्विक पहचान बनाने का दिया संदेश। राज्य में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव का काउंटडाउन शुरू। मिशन 28 के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने 23 की चुनावी रणनीति। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी। राज्य के 1,63,00,000 मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने से मिली छूट। राज्य के क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक में अमेरिकी कंपनियों ने दिखाई निवेश की रुचि। प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक। और रांची में कल से थ्रो बॉल और स्केटिंग का महाकुंभ। दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप और 12वीं नेशनल रैंकिंग के लिए रांची में जुटेंगे पांच देशों के खिलाड़ी और देश भर से 1000 स्केटर्स। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
1: भी ली जाती है।
0: बिल्कुल
1: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
0: जी,
1: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कवि लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत की महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता
0: जी।
1: है। घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य और जल जीवन मिशन को पहुंचाना, और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
0: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
1: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
0: जी।
1: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज़्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
0: जी।
1: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
0: जी।
1: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो। तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन करके उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
0: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर की दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है। आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
1: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है। अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस डे रहा है, अखबारों में भी आया है, लेकिन जहाँ पर मनुष्य आधारित गतिविधियाँ होती हैं वहाँ PM 2.5 और PM 10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है
0: जी,
1: इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहाँ से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज़्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
0: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड

0: इन्वेस्ट, वो क्या करते थे। अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना, कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना बीपी है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफ़ी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव-गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में कैपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें, तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहाँ पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता, उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है, उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है, और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूँ कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है, और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा, तो

0: तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था, तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहाँ पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता
1: बिल्कुल
0: है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है।
1: जी
0: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना। लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है, उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है
1: बिल्कुल
0: पक्षियों के लिए,
1: जी
0: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है। और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड
1: जी
0: तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो,
1: जी
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे?
1: जी
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता है।
1: बिल्कुल
0: तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा। आप एक बात बताइए
1: जी
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज़ लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहाँ से आती है?
1: जी
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन,
1: जी
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है।
1: जी हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की। तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है, ये नेट जीरो के है।
1: जी
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है, ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है, ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है, वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है, वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं, वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, तो वो नेट जीरो।

0: हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है।
1: जी
0: तो ये हरा भरा गृह छोड़ के जाए,
1: जी
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी
1: पृथ्वी
0: कभी
1: भी कभी
0: जीवन
1: जीवन था।
0: था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक फिर माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां

0: suscribir que tada sangodom ki along sorry.
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सरकार की 12 वर्ष आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पे। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार।

कार्यक्रम आपकी पसंद में हम आपको सुनवा रहे हैं। सबसे पहले फिल्म आराधना का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर के स्वर में, आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है एस टी बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहा है न्यू कॉलोनी निमडी चायबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, अनीश अंश, अंशु मुन्ना। आमला टोला चायबासा से रविंद्र कुमार सिन्हा, हर्ष राज सिन्हा, पूनम नारायण। इसी गीत को सुनना चाहा है तुड़ी टोला चायबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, अर्पिता कुमारी, लाडू सुमित ठाकुर, दुल्खी ठाकुर, भोला रजक, बूची खुशी कुमारी। वसुंधरा कॉलोनी सेंट टोला चायबासा से इसी गीत को सुनना चाहा है भोला राम मधुर, विनोद कुमार पवन, मीना पवन। आमला टोला चायबासा से गौरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। इसी गीत को सुनना चाहा है बड़ा निमडी चायबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, अमृत कुमार। और आप हैं इसी गीत को सुनना चाहा है छोटा निमडी चायबासा से बाबू राम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी, ऋतिक कुमार। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कोरा कागज़ का ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आज हम यहीं पे संपन्न कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सबसे पहले आइए देशभक्ति गीत से हम कार्यक्रम रजनीगंधा को आरंभ करते हैं। इस गीत को सुनना चाहा है गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना रूपा मोनिका शिवम मौसमी संतोष आनंद, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पपी भाटिया, चांडिल हारूडी गांव से तुलसी दास महतो, मनोरमा कल्पना महतो, मनमोहनी महतो, दीनबंधु कुचाई ग्राम इच्छाहतु से गोलाराम लोवादा, लुद्री सोमनाथ, पूर्णिमा लालमुनि, बिंजना लोवादा परिवार, ग्राम लोसो दिकी से कोमल महतो, प्रेमी

महतो, गोविंद जीतू, साइमन महतो। और इसी गीत को सुनना चाहे बड़ा बम्बो सुपाई सार से देवंद ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, श्याम देव नायक और देवन बाबू, ग्राम गेलिए लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, अनु, रमेश, बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा एवं बेसरा परिवार, और दलाई केला पदमपुर जिला सरायकेला से लक्ष्मण सोई, बिरसा सोई, राज सोई, अनीता सोई, मनीषा, पूनम और पूरा सोई परिवार। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है पोंडा काटा गांव से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदिनी महली, संजीव सोरेन, और जोजो कुर्मा से मनोज गागराई, बासंती गागराई, सोनाली, आयशा, जितेंद्र, पीताम्बर महतो, रचना गागराई। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कर्मा का गीत। आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
4: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले नगे नहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तो बन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
5: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना जंगल गया है तो आऊ का कहा बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
6: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्तो कहाँ तो घर आई नहीं हमारे घर है बहुत दुख के बात है तो हम बात हो जाए
7: मुतुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुर में ना आया यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
8: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा दो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दोनों में बुरी ने बागिया तोड़ के दोनों से यार फी कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम गई है तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
9: अलिंग मुनि सुरेन तो ऐसे आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिना ही रो जिता हुरा रे मिना ही रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका अली आया न तुम ते ही ना मिल आप ही लेते ना।
3: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
10: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम रजनीगंधा में, और अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अजनबी का गीत। किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के गीत है, संगीत है आर डी बर्मन का। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है दंतरेगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, और कुचाई बिदरी से केपी सोय, सरिता दुर्गामती, रश्मि राजकुमारी, विशाल मुन्ना और सन्नी, ग्राम सुराबेरा से बार सिंह, सरदार घनी बर सरदार कमल सिंह, सरदार सुकमती, सरदार रमेश, अंशु और बीरू सरदार। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है मोहल्या सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधा मणि महतो, रवि बारी बंदनी, संतोषी, दीपक संतोष, राहुल, अन्नू, तन्नू, भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनसुया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अजनबी का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ है।

आप सुन रहे हैं श्रोताओ आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। इस कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले आइए ये आवश्यक सूचना सुन लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के प्रभावित गृह रक्षकों को सूचित किया जाता है कि पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला अंतर्गत मुहर्रम पर्व ड्यूटी 2026 के अवसर पर दिनांक 25 जून 2026 से 28 जून 2026 तक कुल 4 दिनों के लिए विधि व्यवस्था संधारण हेतु 300 गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। अतः वैसे सभी गृह रक्षक जो वर्तमान अवधि में किसी भी प्रकार की कर्तव्य में प्रतिनियुक्त नहीं है, वे सभी गृह रक्षक जिला समादृष्टा कार्यालय चाईबासा में आकर दिनांक 18 जून 2026 से मुहर्रम पर्व हेतु आगमन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसे अति आवश्यक समझें। सूचना समाप्त हुई। अरब कार्यक्रम रजनीगंधा का ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म कोयला से, आवाज़ें हैं कुमार सानू, अलका याग्निक साथी, और गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है मेरी जंग। इस गीत को सुनना चाहा है इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर, गोपाल पाटिल। इसी गीत को फरमाइश भेजा है सुनने के लिए बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है लवई से गुलाब दास, मानिकपुरी रिंगनी से दिनेश वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, मालवी सिंगारपुर से सालिक पुजारी, और आप हैं शिवाजी चौक राजीम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरी जंग का ये गीत।

और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जख्म का गीत, अलका याग्निक की आवाज़ है, आनंद बख्शी के गीत है, संगीत है MM करीम की। इस गीत को सुनना चाहा है अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर, दिनकर बिमल, विशाखा कासलेकर। आप हैं सरायकेला पाड़ापुर दिसावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरे, सुरुमणि हीरामणि, हेमंती डोगरो, साजन मुंडरे, सिद्धेश्वर मुंडरे पाड़ापुरी, शिवाजी डोगरो, मुकेश कुशल मुंडरे, जामोन सिंह मुंडरे, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना, FM शिवा मुंडरे। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है पुटका भाटापारा से भवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। और आप हैं दुर्गई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभनी से CR कुलकर्णी। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जख्म का ये गीत।

फिल्म जख्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा वहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष
2: स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। चौहान ने निर्देश दिए कि जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी और जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की पहली जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
3: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
4: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ
5: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
6: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
3: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जलवायु तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK, UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. A joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. I'm forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expect from G7 discussions?
8: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interest as well as priorities of the global south. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security, and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships with major economies on the sidelines. Saira.
7: Well, thanks, Ankit, for those updates. Moving on, earlier in the day, Prime Minister Modi reached Evian on a two-day visit to attend the summit, which commenced yesterday. In a social media post after his arrival, the Prime Minister said that he looked forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts towards a more sustainable and prosperous planet. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, UK Prime Minister Keir Starmer and President of UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later this evening, he will attend a gala dinner to be hosted by President Macron. A key engagement during the summit will be PM Modi's meeting tomorrow with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in the context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advanced contingency plans for low rainfall districts. Our correspondent has filed this report.
9: The agriculture minister gave a clear message that protecting farmers' interests is the government's top priority under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. The meeting focused on ensuring that all necessary steps are taken well in advance to safeguard agriculture and farmers from any adverse weather conditions that may arise during the season. Mr. Chauhan gave clear directions that full preparations should be made in advance in those districts where there is a possibility of low rainfall or uneven rainfall. He said that such districts should be clearly identified and crop-wise contingency plans should be prepared in coordination with the state governments so that farmers can be provided immediate alternatives, advice and support that in any weather challenge situation. He strongly emphasized that special attention should be given to water conservation, moisture management, intercropping and alternative crop patterns. With Suparna Sekia, Rohan, Akashwani News, Delhi.
7: Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi, during which consensus was reached among six states on the long-pending Keshav multi-purpose dam project aimed at rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign an MOU for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Keshav project will be placed before the Union Cabinet for approval. The Supreme Court today sought response from the centre and states on a plea alleging the misuse of the unique identification of trip, domicile and residential address. The plea sought directions to restrict its use strictly for identity verification only. A bench of Chief Justice Surya Kant and Justice V. Mohanna issued notices to the centre and all states and union territories. This is Akashwani giving you the news. News updates round the clock. Follow us on our X handle and TIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website

0: आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबराह इजलास में शिरकत की। वह आज रात कनाडा और बरतानिया के वजराए आजम नीज मुत्तहिदा अरब वो कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मोदी से आला सतह की एक मीटिंग की। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। भारत और जापान ने जहरीली गैस के अखराज में कमी करने और पायदार तरक्याती इकदाम से मुतालिक तआवुन को फरोग देने की गरज से पेरिस मुआहदे के तहत मुश्तरक क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के लिए निफाज के जाब्ते को अपनाया है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ जंग खत्म करने के मुआहदे में इसराइल को लिबनान से अपनी फौजें भी वापस बुलानी होंगी। IMD ने शुमाली भारत में कल के लिए बिजली चमकने और तुंध हवाओं के साथ गरज चमक की पेशगोई की है। और फेंसिंग यानी शमशेर जनी की सीनियर एशियाई चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के शहर एविया में जारी G7 समिट में एक आला सतह के वर्किंग इजलास में हिस्सा लिया। इस इजलास का मौजू था मीरे नौ का फरोख। इस इजलास में G7 मुल्कों के लीडर, शराकतदार ममालिक और आलमी बैंक और अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक के सीनियर नुमाइंदे शरीक हुए। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जाने लीडरों के बाकायदा खैर मकदम के फौरन बाद ये मीटिंग शुरू हुई। मीडिया पर तस्वीर जारी की और लिखा कि भारत और G7 ममालिक आलमी खुशहाली, पायदारियत और इंसानों की फलाह को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे नुमाइंदे अंकित कुमार, जो वजीर आजम के G7 के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके हमराह गए हुए हैं, ने ताजा तरीन सूरत रिपोर्ट भेजी है।
1: इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी पूरी तरह रणनीतिक है। कई G7 अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वे अब भारत को सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी नवाचार के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधारभूत भागीदार के रूप अपने राष्ट्रीय हितों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। नई दिल्ली का मुख्य जोर व्यापार, नवाचार और मजबूत सप्लाई चेन में गहरे सहयोग पर है और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है। उर्दू खबरों के लिए एविया फ्रांस से अंकित कुमार।
0: इससे कबल आज दिन में वजीर आजम कल शुरू हुए समिट में शिरकत के लिए दो रोजा दौरे पर एविया पहुंचे। अपनी आमद के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर आजम ने लिखा कि वो अहम आलमी मामलात पर दुनिया के लीडरों के साथ बातचीत और तबादले ख्याल के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत एक ज्यादा पायदार और खुशहाल कुर्राए अर्ज की जानिब इज्तिमाई कोशिशों में पेशरफ्त के तहीं पुरअज़्म रहेगा। समिट से अलग वजीर आजम कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, इंग्लैंड के वजीर आजम केयर स्टामर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। आज शाम देर गए वो सदर मैखां की जानिब से मुनक्किदा एक शानदार इशाइये में शिरकत करेंगे। समिट के दौरान एक और अहम बात वजीर आजम मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल होने वाली मुलाकात है। दोनों लीडरों के मुतालिक तवक्को है कि वो कई शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के तरीक़ेकार पर तबादले ख्याल करेंगे, साथ ही बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी सतह पर रूनुमा होने वाले अहम वाक़ियात पर तबादले ख्याल करेंगे। फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर वजीर आजम मोदी कल शाम पेरिस पहुंचेंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज फ्रांस के नीस में इस UPI का आगाज किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि फ्रांस के बावकार खुर्दा कारोबारी मकामात में से एक में भारत के आलमी दर्जे के डिजिटल अदायगी के प्लेटफॉर्म को लाना यूपीआई की आलमी पैमाने पर तौसी में एक और नुमाया कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि ये पहल बड़े पैमाने पर भरोसे, बिला रुकावट और इंटर ऑपरेबल डिजिटल हल फराहम करने की भारत की सलाहियत का मजहर है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि यह आगाज भारत और फ्रांस के दरमियान इक्तसादी और तकनीकी ताल्लुकात को मुस्तहकम करता है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जाम शराकत दारी की बढ़ती हुई गहराई और उमंगों की अक्कासी होती है। बड़े सनअती मुल्कों के ग्रुप ऑफ सेवन समिट के मौके पर अमरीकी इत्तेहादियों ने आज रूस यूक्रेन तनाजे के 4 साल से ज्यादा अरसे के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन की हिमायत के एजेंडे के आगे बढ़ाने के लिए काम किया। मेजबान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखां ने कहा कि वो ये ख्वाहिश करते हैं कि ट्रंप को तरगीब दी जाती रहे कि वो यूक्रेन की हिमायत और रूस पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला जारी रखें ताकि किसी अमन माहदे तक रसाई में मदद मिले। ट्रंप के तहत अमरीका ने यूक्रेन के लिए इमदाद में कटौती की है। फ्रांस और उसके यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक अब कीफ को फौजी और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी आज सुबह वर्किंग इजलास में G7 लीडरों के साथ शिरकत की, लेकिन मुज़ाकरात जल्द ही खत्म हो गए क्योंकि लीडरान सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट के लिए जमा हुए थे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में आला सतह की ज़राअत से मुतालिक एक मीटिंग में शिरकत की और 2026 की खरीफ की फसल के लिए मुल्क भर में तैयारियों का जायजा लिया। वजारत ज़राअत

0: से सुपर्णा शेख हफीज।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज ऐलान किया है कि तारीखी ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियांग में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने मुल्क के दिफा

के लिए रिजर्व होंगी। 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम दहशतगर्दी के खिलाफ नरेंद्र

कर रहा है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए सिलचर के प्रोफेसर अनूप और नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मामले से निपटने के लिए तेजी के साथ काम किया है। एनडीए हुकूमत दहशतगर्दों

आकाशवाणी है। भारत और जापान ने पेरिस मुआहिदे की दफा 6.2 के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM पर अमल कार्रवाई, जहरीली गैसों के अखराज में कमी और पायदार तरक्की की स्कीमों के

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM की 101.7 MHz पे। रात्रि के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम महफिल। इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा। नमस्कार। आज मैं इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम महफिल में एक ही गज़ल गायक को आप सबों को सुनवाने जा रही हूँ। गज़ल गायक है चंदन दास। तो आइए सुनते हैं ये पहली गज़ल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम महफिल में। और अब ये अगली गज़ल आज आप सुन रहे हैं गज़ल गायक चंदन दास को।

और अब कार्यक्रम महफिल की ये आखिरी गज़ल हम आपको सुनवा रहे हैं। आप सुन रहे हैं एक ही गज़ल गायक चंदन दास को।

चंदन दास की गई इस गजल के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम महफिल से अब हमें इजाज़त दीजिए। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग।

कार्यक्रम सुरों के रंग के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म मेरा साया का ये खूबसूरत सा गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम सुरों के रंग में, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सफर का गीत, मुकेश की आवाज़, इंदिवर के बोल, संगीत कल्याण जी आनंद जी के।

बाजी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज़ में। और अभी कार्यक्रम शुरू के रंग का ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, फिल्म का नाम है गाइड।

और अब प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दीवाना का गीत, मुकेश की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

संगीत के साथ ही श्रोता कार्यक्रम शुरू के रंग अपने पर समाप्त होता है। राधा रति से इजाजत, नमस्कार। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Inam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. Ranjit also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of G7 summit in Avignon, France. Tomorrow, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of operations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advanced contingency plans for low rainfall districts. Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi during which consensus was reached among six states on the long-pending Kishan multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a memorandum of understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishan project will be placed before the Union Cabinet